नसीब होता है वो वीकनेस नहीं है, वो कमज़ोरी नहीं है, वो डर दर हकीकत इंसान को निडर बना देता है। हदीसों में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि मुझसे डरो ताकि मैं सारी कायनात को तुमसे डरा दूंगा। अगर कायनात को डराना चाहते हो तो एक ज़ात से हमें डरना पड़ेगा। डर कमज़ोरी नहीं है, ये डर दर हकीकत ताकत है। जो अल्लाह से डरता है वो सब पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए हदीस में इमाम ने कंटिन्यूएशन में बयान किया है कि जो डरता है वो चलता है, जो चलता है वो भागता है, जो भागता है वो पहुंचता है, और उसी को मिलता है जो पहुंचता है। बात आप तक पहुंच रही है? जो डरता है वो चलता है, और जो चलता है वो दौड़ता है, जो दौड़ता है वही पहुंचता है, और जो पहुंच जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसी को अता करता है। अल्लाह से दूर भागना नहीं है, अल्लाह की तरफ भागना है। कुरान मजीद में ये फा जो है, फा कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, हर्फ फा, फा यानी फना फिल्ला, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में अपने आप को फना करना, या फी सबीलिल्लाह काम करना, तो अल्लाह के रास्ते में काम करना, फिर्रु इलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ना है। जिससे डरते हैं हम उसके अगेंस्ट रास्ते में भागते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह की तरफ हमें भागना पड़ेगा। जहाँ भागते चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करता चला जाएगा। पहली सिफत खौफ का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, और दूसरी सिफत है मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत नहीं है तो ये कम्युनिटी नहीं बन सकती। कम्युनिटी की बुनियाद में, फाउंडेशन में मोहब्बत का होना ज़रूरी है। मोहब्बत को मैं कैसे हासिल करूँ? का मारिफत बढ़ती चली जाएगी तो मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। पहचान और ज़रूरतों का एहसास बढ़ता चला जाएगा तो मोहब्बत भी बढ़ती चली जाएगी। हम एक दूसरे के मोहताज हैं, हम एक दूसरे के नियाजमंद हैं, हम एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। दूसरे लोग मेरा साथ ना दें तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं दूसरों का साथ दूं ताकि वो भी आगे बढ़ सके, और दूसरा मेरा साथ दे ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी, नेसेसिटीज़ का ख्याल इंसान के अंदर बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। कोई इंसान यहाँ इंडिपेंडेंट ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, एक हर्फ नहीं सीख पाएगा बंदा अगर कहे मैं इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं फैमिली का मोहताज हूँ, एक फैमिली दूसरे फैमिलीज की मोहताज है, मैं दूसरे आर्ट का मोहताज हूँ, इल्म का मोहताज हूँ, दूसरा मेरे इल्म और मेरे आर्ट का मोहताज है। ये एहतियाजात मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, ये नेसेसिटीज़ मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। उस कम्युनिटी की बुनियाद में मोहब्बत है, मारिफत बढ़ेगी, एक दूसरे को हम चाहने लगेंगे, जो मेरा मौजू ने इंशाल्लाह कभी इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो तीसरा उनवान है वो उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। आदमी सिर्फ डरता रहे तो आगे नहीं बढ़ेगा। फ्यूचर पर, आइंदा अच्छे होने पर एक होप इंसान की ज़िंदगी में हो, सिचुएशन कोई बदलने वाला है, जो हालत बदलने वाला है, जो अच्छा रास्ता दिखाने वाला है, मेरी इक्तिसादी हालात, मेरी घरेलू हालात बदलने वाले हैं, और बदलने वाला अल्लाह है। अगर ये इंसान के अंदर उम्मीद पैदा हो जाए, इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। हमें खौफ चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें उम्मीद चाहिए। खौफ इल्म का नतीजा और मोहब्बत मारिफत का नतीजा है, और उम्मीद यकीन का नतीजा है। जितनी सर्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही उम्मीद बढ़ती जाएगी। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की अताओं पर यकीन, अल्लाह की इनायतों पर यकीन, अल्लाह की ब्लेसिंग्स पर यकीन, अल्लाह के फेवर होने पर, फेवर देने पर यकीन बढ़ता चला जाए, उम्मीद बढ़ती चली जाएगी। और जितनी उम्मीद बढ़ती जाएगी उतना इंसान के अंदर जीने का शौक बढ़ता चला जाएगा, जीने का शौक बढ़ता चला जाएगा। इस उम्मीद को बाकी रखना बहुत ज़रूरी है। कई रिवायतों में हमारे पास इस उम्मीद की अहमियत को बताया गया है। हत्ता यहाँ तक कहा गया है, अगर उम्मीद ना हो तो कभी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे के फ्यूचर पर माँ को उम्मीद है ना, ये सहारा बनेगा, ये हाथ थामेगा, हमारी मदद करेगा। ये उम्मीद है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगर उम्मीद ना हो तो कोई किसान ज़मीन में दरख्त नहीं लगाएगा। ये दरख्त बड़ा होगा, फल देगा, क्या ये किसान, ये फार्मर उस फल से फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? ज़िंदगी बाकी रहती है, नहीं बाकी रहेगी। वो सिर्फ उम्मीद है जो फार्मर को काम करने पर मजबूर करती है। उम्मीद को हटा लिया जाए, वो

इंसान भी थक कर सो जाएगा, इसलिए कि उसे कोई उम्मीद और फ्यूचर पर भरोसा नहीं होगा। हजरत ईसा ने देखा एक सीनियर सिटीजन, एक बूढ़ा इंसान फार्मिंग कर रहा है, काम कर रहा है, खेती कर रहा है। हजरत ईसा ने कहा परवरदिगार इससे, इसके दिल से उम्मीद को निकाल ले। थोड़ी देर के अल्लाह तबारक व तआला ने होप को उसकी ज़िंदगी से निकाल लिया। वो फार्मर थक हार कर किसी दरख्त के साए में बैठ गया। फिर हजरत ईसा ने कहा परवरदिगार इसके दिल में उम्मीद को डाल दे, होप को डाल दे। जो ही होप डाली गई, उम्मीद पैदा की गई, फिर वो खड़ा हो गया, कमर पे कपड़ा बांध कर काम करने लगा। काम, अमल, एक्शन उम्मीद का नतीजा है। हमारे पास दुआएं, पुकार, मुनाजातें उम्मीद का नतीजा है। अगर उम्मीद ना हो कबूलियत की, अगर होप ना हो कबूलियत की, कभी बंदा दुआ भी नहीं कर सकता। इसलिए मौलाए कायनात ने दुआए कुमैल में फरमाया परवरदिगार हमारे पास दो ही तो चीज़ें हैं, एक उम्मीद है, दूसरे आंसू हैं। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक उम्मीद और वरहम क्या है, मन रासो मालेहिर रजा। परवरदिगार रास माल कहते हैं अरबी जबान में, कैपिटल, हमारी पूंजी। परवरदिगार मेरा कैपिटल मेरी उम्मीद है, और मेरा सरमाया और मेरा वेपन जो है मेरे आंसू और गिरिया है। दो ही चीज़ें हमारे पास हैं। अगर उलमाए कराम ने जो उरफा है वो कहते हैं भी वो दो चीज़ें भी हमारी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है। हम समझते हमारी उम्मीद है, उम्मीद भी दिल में डालने वाला कौन है, अल्लाह तबारक व तआला। आयतुल्ला जवादी अमोली कहते हैं सिलाहुल बुका, गिरिया हमारा वेपन है, गिरिया हमारा असलहा है। जब हम दुआ के लिए बैठते रोने लगते हैं तो पता चलता वो भी हमारा नहीं है, उसने तौफीक दी है तो आंख से आंसू निकल रहे हैं, उसने तौफीक दिया तो आंसू निकल, वो भी हमारा नहीं है। हम समझते हैं हमारी हमारी चीज़ें, हमारा कैपिटल उम्मीद है और हमारा वेपन जो है वो आंसू। दो ही चीज़ें हमारे पास हैं, दोनों हम अल्लाह की बारगाह में रखते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करता है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, इस होप को बाकी रखना बहुत ज़रूरी, होप ऑफ चेंज, सिचुएशन बदलेंगे, हालात बदलेंगे, इस उम्मीद के साथ इंसान को ज़िंदगी गुजारना है। जिसके अंदर अल्लाह से उसकी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं वो कभी परेशान नहीं होता जी, वो कभी अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं करता, वो कभी दर बदर की ठोकरें नहीं खाता। क्यों? उसके पास ऐसी ताकत मौजूद है जो उसको उसकी हालत को बदलने वाली है। किससे उम्मीद वाबस्ता हो? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अच्छा सुन रहे हैं तो एक और सलवत का सहारा दीजिएगा। नहजुल बलागा में फरमाते हैं पांच जुमले ऐसे हैं, पांच स्टेटमेंट्स कहिए, पांच सुनहरी जुमले कहिए, तलाई जुमले कहिए, अगर तुम सारी दुनिया का चक्कर लगाओ ढूंढो तो वैसे पांच जुमले तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं, जो मौला कायनात बता रहे हैं। मौला कायनात खुद कह रहे हैं नहजुल बलागा में, अगर सैर करो, सफ़र करो, ट्रैवल करो जिंदगी भर इन जुमलात को ढूंढने के लिए, ऐसे जुमले तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर कोई बता सकता है तो वाली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बता सकते हैं। सब मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो पांच जुमले कौन से, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं ताकि सब्र और उम्मीद के दरमियान जो रिश्ता है वो रिश्ते को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मौला कायनात फरमाते पहला जुमला सिवाय अल्लाह के किसी से उम्मीद न लगाना। जी जाहिर सी बात है हमारी जो उम्मीदें होती हैं वाबस्ता हो जाती हैं, कभी माल से, कभी दौलत से, कभी हुकूमत से, कभी दूसरों से, कभी रिश्तेदारों से, थोड़ा बहुत हम आस लगा बैठते हैं, उम्मीद लगा बैठते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं नहीं, ला यरजु अहदुन इल्ला रब्बा, सिवाय अपने रब के किसी और से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता ना करना, वरना तुम मायूस हो जाओगे। इसलिए अक्सर लोग इसलिए मायूस हो जाते हैं कि वो ताकत से वाबस्ता हो जाते हैं, हक से वाबस्ता नहीं होते। मौला कायनात कहते हैं हक से वाबस्ता हो जाना, इसलिए कि हक से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पहला जुमला ये कि तुम अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करना, रिलेटेड करना अल्लाह तबारक व तआला से, इल्ला रब्बा, सिवाय अल्लाह के किसी से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता ना करना। दूसरा जुमला वला यखाफन्ना इल्ला ज़म्बा, किसी बड़ी ताकत से, किसी वेपन से, किसी फौजी ताकत से कभी ना डरना, अगर डरना ही है तो अपने गुनाहों से डरो।
لا یخافن الا ذنب. انسان کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ خطاؤں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. اگر انسان اگر ویکنس کا احساس کر رہا ہے کسی اور وجہ سے نہیں، وہ خطا و گناہ ہیں جو انسان

इंसान के अंदर की जो हिम्मत है, शुजात है, उसे छीन लेते हैं। ला यकाफन्ना इल्ला ज़म्बा, अगर डरना ही है तो अपने गुनाहों से डरो, इसलिए कि जितना नेकियों के रास्ते पर चलते चले जाओगे उतना ही अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें ताकत अता करेगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा। जालिम के सामने बोलने की ताकत और शुजात उसी वक्त पैदा होती है जब इंसान का किरदार अच्छा होता है। इंसान का, इंसान के दामन में धब्बा ना हो तो डर किस बात का है जी। एक्सपोज हो जाने का अगर डर होता है ना तो बंदा डर जाता है। अगर इंसान के अंदर इंसान का किरदार खुली किताब हो तो वो डर किस बात का है। चाहे वो वलीद के दरबार में हो, इमाम हुसैन ने पुकार कर कहा था मिसली ला युबाओ मिसला, मुझ जैसा कोई, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत कभी नहीं करेगा, एक हिम्मत है। चाहे वो ज़ैनब कुबरा का दरबार में खुतबा हो, वल्लाही ला तमहू ज़िक्रना, रब्बे अल्लाह की कसम तो हमारे जिक्र को खत्म नहीं कर सकता। ये शुजात आई कहां से, ये हिम्मत आई कहां से? ये शुजात और हिम्मत बिरयानी और रोटी का नतीजा नहीं, ये शुजात और हिम्मत पाक किरदार का नतीजा है। जब दामन में धब्बा ना होते आदमी के अंदर शुजात पैदा होती है। ला यकाफन्ना इल्ला दम्बा, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अपने गुनाह के किसी और से न डरना। तीसरा जुमला उलमा के लिए, तीसरा जुमला वो लोग जो तबलीग के रास्ते में निकलते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं ला यस्तहिल आलिम, उस आलिम को हया नहीं करनी चाहिए। जब वो किसी चीज़ को नहीं जानता है तो जानने की कोशिश करे। अपनी जहालत के जरिए से लोगों को दीन की तरफ बुलाना दर हकीकत लोगों को गुमराह करना है। किसी चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है, इल्म हासिल करने की कोशिश करो। इल्म हासिल करने में हया ना करना, इल्म हासिल करने में हया ना करना। मैं सीखूं उससे सीखूं, अगर सीखने का मौका आए बंदे को सीखना पड़ेगा। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, अगर एड्रेस का पता नहीं है तो गाड़ी को खड़ी करो। उस जमाने का वक्त है जब GPRS वगैरह नहीं थे जी, अपनी गाड़ी रोको, किसी से पूछ लो पता कहाँ है, वरना अगर नहीं पूछोगे दिन भर शहर के दरमियान घूमते रहोगे तुम्हें पता मिलने वाला नहीं। दो लम्हे की जिल्लत गवारा कर लो ताकि उम्र भर इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सको। किसी उस्ताद के सामने तुम्हें जानू तय करना पड़ेगा, है करना पड़ेगा। आजकल GPS है, रोड बता देता है, रास्ता बता देता है। किसी ने कहा वहां भी एक औरत की आवाज है तो लोग सुन लेते हैं, वरना कभी ना सुनते लोग जी। एड्रेस अगर कोई और बताने वाली हो तो कभी ना सुनते, क्योंकि एक औरत की आवाज है तो बंदा बैठा सुन लेता है, अगर ना सुनेगा तो परेशान हो जाएगा। आगा किराती ने कहा फिरौन ने कैसे बात मान ली, मूसा को अपने आगोश में उठा लिया, तो आगा किराती मजाकन कहते हैं चूंकि आसिया ने कहा था उसे उठा लिया। अगर बीवी ना कहती तो फिरौन भी कभी मूसे को अपने आगोश में ना लेता। तो कभी कभार सवाल का तुम्हें जवाब मालूम नहीं है तो भैया पूछ लो, अगर कोई इल्म नहीं है तो भैया पूछ लो। इससे बगैर सीखे अगर आगे बढ़ोगे नुकसान तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं होगा। ला यस्तही, तुम्हें हया नहीं करना है। और तो चौथा जुमला मौला कनार फरमाते हैं ला यस्तही, कभी कुछ चीज़ का इल्म तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो वल्लाहुल आलिम, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। बाज़ रिवायतों में कह दो ला अदरी, मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम कह देना इंसान की फजीलत है, कमजोरी नहीं है। मैं नहीं जानता इस सवाल का जवाब, साफ कह दो ताकि कोई गलत जवाब सुनकर डिविएट ना हो जाए, गलत जवाब सुनकर गुमराह ना हो जाए। ये चौथा जुमला कितना बेहतरीन, कितने बेहतरीन उसूल बताए मौलाए कायनात ने। पांचवा जुमला के वालमु अन्न सब्र मिनल ईमान बे मंजिलते कर्रास मिनल जसद, याद रखो सब्र और ईमान का रिश्ता ऐसा ही है जैसे इंसान के सर और बदन का रिश्ता है। अगर सर बदन पर सर ना हो तो कोई बदन की कीमत नहीं है, ईमान में सब्र ना हो तो सब्र की कीमत नहीं है। हमारा मौजू क्या था हमारा, मैं मिंबर पर ऊंचा सुनता हूं, सब्र और उम्मीद। इस पांच जुमले में मौलाए कायनात ने दोनों चीजों को बयान कर दिया। उम्मीद से कलाम को शुरू किया, सब्र पर खत्म किया है। अगर उम्मीद और सब्र दोनों हमारी जिंदगी में जमा हो जाएं, जिंदगी कामयाब, हाल भी अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान मजीद में, क्या है मेरे बंदो, ऐ मेरे रसूल, मेरे गुनहगार बंदों से कह देना, क्या कह देना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस

अल्लाह की रहमत बिखरी हुई है। हमें रहमत ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रहमत तलाश करने की ज़रूरत है। रहमत तलाश करो, ढूंढो, हमारा काम ढूंढना है। और आज की जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, सारे ढूंढते हैं, ईजाद नहीं करते, वो ढूंढना उनका काम है। रहमत को तलाश करो, बिखरी हुई है रहमत अल्लाह तबारक व तआला की। कभी इस्तग़फ़ार से तलाश करो, कभी सजदे से तलाश करो, कभी सदक़े से तलाश करो, रहमत परवरदिगार को ढूंढो, तलाश करो, तुम्हें मिल जाएगी। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, मेरी खताएं बड़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूबा जमीआ। ये दरवाज़ा मस्जिद का क्यों खुला हुआ है, ये इमाम बारगाह का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? आओ तो सही, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में राज़ो नियाज़ करना। राज़ो नियाज़ के लिए लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल के तारों को अल्लाह की रहमत से जोड़ देना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। सो मिल के या अली जी, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह माफ़ करने वाला भी है और रहमत नाजिल करने वाला भी है। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं मग़फ़िरत के बाद फिर रहमत का तज़किरा क्यों, मग़फ़िरत के बाद रहमत का तज़किरा। अल्लाह माफ़ करने वाला है, यानी क्या, अगर तुमसे गुनाह सरज़द हो गया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर रहमत का क्या माना है? ना तो ना अल्लाह माफ़ करेगा, बल्कि गुनाहों के नशानात को भी मिटा देगा। गुनाहों के इतना करीम अल्लाह है, वहाँ इतना रहीम अल्लाह, इतना गफूर अल्लाह। अगर कोई सिफात परवरदिगार को जान ले, वो कभी अल्लाह का दामन अपने हाथ से छूटने नहीं देगा। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, एक अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हम लोगों के लिए, कभी उम्मीद का दामन हाथ से जाने ना देना। चलिए देखिए, एक नमूने हमारे पास हैं कि नहीं है? नमूने कुरान मजीद में मौजूद हैं, उसवा कुरान मजीद में मौजूद है। कहाँ पर? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। आप हज़रत सारा के साथ बैठे तशरीफ़ फरमा थे, आसमान से फरिश्ते आए, फरिश्ते आने के बाद खुशखबरी दी हज़रत इब्राहिम को कि आपके घर में जी एक लड़का पैदा होने वाला है, आपके घर में विलादत होने वाली है। बशारत दी, ग्लैड टाइडिंग्स फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम को। तो हज़रत सारा ने कहा ये उम्र और ये खुशखबरी, ये एज 100 साल के हो गए थे और आपकी बीवी भी सारा जो वकीम थी, भांज थी, ये उम्र और ये खुशखबरी, पहले ही आ जाते हैं तो एक और खुशखबरी हमें मिल जाती है। हज़रत इस्माइल के बाद हज़रत इसहाक की खुशखबरी दी फरिश्तों ने। तो गोया मायूसी की बो आ रही थी इस कलाम में कि ये उम्र और ये खुशखबरी। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा قال لا تقنط من رحمة من يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون إلا الضالون। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वही गुमराह मुंह मोड़ लेता है, जो गुमराह होता है, जो डिविएट होता है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। वो देना चाहे तो वो उम्र नहीं देखता, वो अता करता चला जाता है, वो अता करता चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो अशरफ सीनियर सिटीजन दुआ मांग ले जी, सीनियर सिटीजन दुआ भी कर ले सकते हैं ना, कोई ऐब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फैली हुई है। मैं यकनुत मिन रहमत रब्बी इल्ला दालून, डिविएटेड लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। हज़रत इब्राहिम ने प्रैक्टिकली तौर पे समझाया अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इस एज में हज़रत ज़करिया ने भी दुआ की थी, दुआ की और घबरा गए। पता है कुरान मजीद की आयतें हैं, हज़रत ज़करिया ने दुआ की, हज़रत मरियम की जिंदगी को देखकर आपने दुआ की। दुआ करने के बाद कहा परवरदिगार मुझे भी ऐसा ही एक बेटा चाहिए, ऐसा ही एक औलाद चाहिए जिसके सामने जन्नत के फल आए, वो मेरा वारिस बने, मेरे माल का वारिस, मेरे मकाम का वारिस बने। जो दुआ कर ली अल्लाह तबारक व तआला ने, ठीक है हम दे देते हैं। फौरन दुआ की और घबरा गए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जब कुछ नहीं था तो हमने तुम्हें पैदा किया, अब तुम तो हो हमारे दरमियान, क्या मुश्किल है। अल्लाह ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, अगर वो देना चाहे तो खल्क करना चाहे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मुश्किल, आसान, आज और कल, जवानी, बुढ़ापा हमारे लिए है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं है। उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। अल्लाह तबारक, हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं यकनुत मिन रहमत रब्बी, कभी भी अल्लाह की रहमत से अपने आप को मायूस न करना। वही मायूस होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं। पहली मिसाल, दूसरी मिसाल, मैं मंजिल तक पहुँच रहा हूँ।

रिवार्ड को पाने के बाद ये सख्तियाँ भूल जाओगे, ये परेशानियाँ भूलो। काम बहुत सख्त है, आसान काम नहीं है घर का काम भी करना। मेरी माँ बहनों को सलाम जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर के लिए खर्च करती हैं, वो कनीज़ान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। मसाहिब की तरफ नहीं आ रहा था, अब ले आए मुझे। और दूसरी रिवायत, जब मौलाए कायनात कूफे में मौजूद थे और मौलाए कायनात अपने असहाब के दरमियान मौजूद थे और अपने असहाब से मौलाए कायनात ने सवाल किया, मुझे

वो आए अपना नाम लिखाएं, और कुछ लोग ऐसे भी आए वॉलंटियर करने के लिए, कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम एक विजिट तो करो, देखो अरबईन मॉडल को किस तरह कॉपी किया जा सकता है। इससे बेहतर मेरे पास जुमला नहीं है। हम ज्यारत पर गए थे ना नजफ से करबला चलकर, हमने देखा अरबईन मॉडल किसे कहते हैं, दूसरे की खिदमत करना, दूसरे को पानी पिलाना, तबलीग करना, किसी का हाथ थामना, किसी के इलाज का इंतज़ाम करना, जी जब कुछ ना बन पड़े तो अपना घर खाली करके दे देना, यही तो अरबईन मॉडल था। अरे इस मफहूम ज़ोया हुसैन में ये तो अरबईन मॉडल की कॉपी है। चंद दिन ये काम करके देखो किस तरह इमाम की आवाज़ पर हम लब्बैक कहने के हकदार बन जाते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जितना हो सकता है तमाम अपने घर वालों को ले आइए, देखिएगा ताकि एनकरेज हो सकें वो, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले इस मैदान में काम कर सकें। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, सब्र और उम्मीद, इस उम्मीद के साथ आइंदा हमारा और बेहतर होगा, इन कामों को हम और आगे बढ़ाएंगे। सलाम हो उस रसूल आज़म पर, सलाम हो उस रसूल अकरम पर, जिसने उम्मत से उम्मीद का दामन हाथ से छूटने ना दिया, उम्मीदवार बनाया। तुम कामयाब होगे, वो अंतुमुल आलान, तुम बड़े होगे, अच्छे होगे, कामयाब होगे, अगर ईमान का दामन तुम्हारे हाथ से जाने ना पाए। पुर उम्मीद इंसान पैगंबर इस्लाम, कितने जुल्म ढाए इस अजीम इंसान पर, इस इंसान ने ना सब्र को जहाज से जाने दिया, ना उम्मीद को जाने दिया। एक बद्दुआ करते तो सारी उम्मत तबाह हो जाती जी, सारी उम्मत तबाह हो जाती। ताइफ में इतने पत्थर बरसाए आपकी पेशानी पर, आपके सर पर खून मुबारक आपके बदन से रस रहा था। कितना उम्मीदवार था हमारा नबी, हाथों को बुलंद करके कहता परवरदिगार इन्हें नहीं मालूम है मैं किस चीज की तरफ इन्हें बुला रहा हूं, इन्हें नहीं मालूम है। दंदान मुबारक को जंगे ओहद में शहीद किया गया, वक्त था बद्दुआ का लेकिन तो बद्दुआ नहीं की, कौम के लिए कहा इनको नहीं मालूम, इनको हिदायत की तरफ बुला रहा हूं और ये लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं। कितना मदलूम और उम्मीदवार था हमारा नबी, कितना सताया गया हमारे नबी को, गलत अलकाब से पुकारा गया, कभी झूठा कहा गया नऊदो बिल्ला, कभी साहिर कहा गया, कभी शायर कहा गया, कभी मजनून कहा गया, कभी शहर से निकाला गया, मक्का छोड़कर मदीना चले गए जी, कभी आपके रिश्तेदारों को, करीब तरीन रिश्तेदारों को शहीद किया गया, हजरत हमजा को आपकी निगाहों के सामने शहीद कर डाला। हजरत हमजा की शहादत के बाद आपकी आंखों में आंसू देखा लोगों ने, आपको गमजदा किया गया, आपको रुलाया गया, और ये रसूल जब दुनिया से जा रहे हैं तो रसूल वसीयतें करते हैं। गैर कोई जुमला कहता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती, जब अपना बज़्म में बैठने वाला एक जुमला कहता है तो दिल टूट जाता है। आखिरी लम्हात में भी रसूल को रुलाया, इन्ना रजुल ला यहजुर, कहने वाले ने कहा ये रसूल को, रसूल पर बखार चढ़ गया है, रसूल के अक्ल पर शक किया गया, कितना गिरिया किया होगा हमारे रसूल ने। इसे किसी बुजुर्ग स्कॉलर ने कहा किसी के इखलास का कभी इम्तिहान ना लेना, सबसे बड़ा इम्तिहान सिंसियरिटी का इम्तिहान होता है। परेशान किया गया रसूल इस्लाम को, अपनी ज़िंदगी का के गम ज़्यादा थे। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद, हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आपने आमुल हुज़्न करार दिया, आपने गिरिया किया है, आपने गिरिया किया, आपके आंखों में आंसू देखे हैं लोगों ने, आपके बच्चे इस दुनिया से गए तो आपने गिरिया किया, हज़रत इब्राहिम इस दुनिया से गए तो आपके आंखों में आंसू देखे। सबसे ज़्यादा रसूल को जो खौफ था वो आपकी वफ़ात या शहादत के बाद का था। जो लोगों के दिलों में कीना है, जो एनिमिटी है, कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए कई मकामात पर रसूल ने अपने बच्चों की मुसीबत बयान की है। कभी अली की मुसीबत को बयान किया, कभी फातिमा की मुसीबत का जिक्र किया, कभी हसन की मुसीबत को बयान किया, कभी हुसैन की मुसीबत को बयान किया, कभी जन्नत से जो काफूर आया उसके तकसीम करने की बारी आई तो हमारे रसूल ने गिरिया किया। कुछ काफूर, जन्नती काफूर आया, अपने लिए कुछ रखा, अली के लिए कुछ दिया, फातिमा के लिए कुछ, हसन के लिए कुछ, जब बारी हुसैन की आई तो माँ तड़प गई।

बाबा मेरे हुसैन के क्या कसूर है। रसूल ने कहा जिसे कफन नसीब ना हो उसे हनूद की क्या जरूरत है। रसूल ने तस्करा किया, बार बार तस्करा किया अपने बच्चों की आदत का। शायद आखिरी लम्हा से पहले हो रसूल ने अपने घर वालों को बुलाया, अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन को बुलाया, और बुलाने के बाद अपने वसीयत के, अली उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तेरे सर पे जर्ब लगेगी, तेरी रिशे मुबारक खून से, सर के खून से भर जाएगी। बीबी के मसाइब का आपने बयान किया, मेरे बाद क्या होने वाला है। और कभी हसन के दहन का बोसा लिया, कभी हुसैन के गले का बोसा लिया, फिर माँ तड़प गई, बाबा हसन के मुंह का बोसा और हुसैन के गले का बोसा क्यों? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे बेटे हसन को जहर दिया जाएगा और मेरे बेटे हुसैन का गला खुंद खंजर से ज़िबह कर दिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने मसाइब को बताया है, मसाइब को बयान किया, कहा वसीयत में या अली तेरी निगाहों के सामने दो रुकन तोड़ दिए जाएंगे और तू दो मेरे खुशबूदार फूलों की हिफाजत करना, जो तेरे निगाहों के सामने दो रुकन तोड़ दिए जाएंगे, एक मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तेरा क्या हाल होगा, और जब तेरी निगाहों के सामने तेरी जौजा के पहलू पर जलता तेरा क्या हाल होगा है अली। दो रुकन है, दो सुतून है, एक पैगंबर की सूरत में और एक फातिमा की सूरत में। इसलिए मौलाए कायनात ने दोनों जनाजों पर गिरिया किया है। रसूल के जनाजे पर मौलाए कायनात ने कहा इनकता बे मौत या रसूल अल्लाह मा लम यनकता बे मौत अहदन, या रसूल अल्लाह आपके जाने से जो वही का सिलसिला टूट चुका है, किसी और के जाने से नहीं टूटता था, वो सिलसिला टूट गया। गम का इजहार किया मौलाए कायनात ने, गिरिया किया इस सुतून के टूट जाने के बाद। और एक सुतून जो टूटा वो बीबी का सुतून था। बीबी की सूरत में जब रुकन टूटा, मौलाए कायनात ने फातिमा को कब्र में लिटा कर कहा या रसूल अल्लाह जो गुजरा है फातिमा पर, फातिमा से पूछ लेना। और उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमा ए फातिमा आज के बाद अली की रातें गिरिया करते हुए गुजरेंगी, आज के बाद अली के आंखों से आंसू कभी नहीं रुकेंगे। ये मौलाए कायनात का खुतबा है नहजुल बलागा में, अली के आंखों से आंसू जारी रहेंगे, बेचैनी की रातें होंगी आज के बाद फातिमा के जाने के बाद। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली दो मेरे खुशबूदार रायहानतैन की हिफाजत करना, एक हसन की हिफाजत और मेरे हुसैन की हिफाजत करना। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह।

0: ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, दर्द तो नहीं हो रहा, प्यास तो नहीं लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने मन्नत मांगी है, जैसे ही आंख खोलोगी एक बकरा कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है?
1: सब खैरियत से तो हैं?
0: सब बच गए सिवाय एक के, जो अपनी लालच की वजह से मारा गया।
2: अल्लाह हू अकबर,
3: अल्लाह हू अकबर,
2: अल्लाह हू अकबर,
3: अल्लाह
0: अल्लाह।

0: कैसे हो बेटा? दर्द तो नहीं है ना?
1: जी नहीं।
2: अल्लाह हू अकबर,
3: अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर।
2: अल्लाह हू अकबर,
3: अल्लाह हू अकबर,
0: अल्लाह हू अकबर। खुदा रहमत करे।
2: हम सब लालच के गुलाम हैं, कोई बच्चों का, कोई सिक्कों का और कोई खूबसूरत बीवी का। अगर संदूक से दिल ना लगाया होता तो ये इंसान अब भी जिंदा होता। इसकी लालच इसे

0: खा गई। बेहतर है इसे बख्श दो। शुक्र करो कि बेटे का दाग नहीं देखना पड़ा।
1: अब हम हैं और ये बेसालार कारमा, हम सब में रास्ता आप ही जानते हैं। आपके साथ मुहाफिज भी हैं। अभी आप सब जितने दिन आराम फरमाना चाहते हैं फरमाइए, फिर हम साथ चलेंगे।
2: जैसे ही मेरी बीवी की तबीयत बेहतर हो जाए चल पड़ेंगे
1: इंशाल्लाह।
2: इस तरह चलेंगे कि हज के मौसम में मक्का पहुंचे
1: इंशाल्लाह।
2: इंशाल्लाह जनाजा जमीन पर ना रहे।
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
2: كفوا أحد.

0: मेरे इंतजार में है।
1: उनका हक बनता है। लिखो। अबुज़र, अब बारी है असली चीज की। तुमने कम तकलीफें नहीं उठाई हैं, खूब बर्दाश्त किया है। ये रहा तुम्हारा इनाम।

0: असली कमान। अब जो कुछ सीखा है उसे खुद याद करो। पूरा ध्यान एक तरफ, सांस रोको, हाँ तवज्जो, फिर तीर को छोड़ो।
1: नहीं होगा, मेरे बस में नहीं है।
0: ना उम्मीद ना हो, हर काम में थोड़ा हिस्सा तुम्हारा है और आधे से ज्यादा खुदा का। उस पर भरोसा कर और उससे मदद।
1: क्या मतलब?
0: कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी तीर तुम कमान से छोड़ते हो उसमें पहले अल्लाह का इरादा है और बाद में तुम्हारे बाजू की ताकत। अगर ऐसा ना किया तो हर काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और नामुमकिन भी। क्या मदीने के पहलवान को जानते हो?
1: नहीं, कौन है?
0: इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ। मदीने में एक पहलवान था जो शुजात और इंसाफ में बेमिसाल था। इत्तेफाक से एक जंग के दौरान उनके जिस्म में बहुत दर्द उठता है,
1: जिस तरह मुझे बुखार था।
0: तुम्हारे जैसे, बल्कि उससे भी ज्यादा।
1: क्या वो पहलवान नहीं थे?
0: थे, लेकिन पहलवान का जिस्म और जान भी हम जैसा ही होता है। वो बीमार होता है, उसे दर्द और बुखार होता है। वो आशिक होता है। सभी चीजों में तुम्हारे और मुझ जैसा सिवाय एक चीज में।
1: किस चीज के?
0: ईमान के। ईमान में जमीन और आसमान कभी भी उस जैसा ना देख पाएगा।
1: जंग का बताओ।
0: अच्छा जंग, हाँ। जब दुश्मन किले में छुप गया और जब जंग लंबी होती नजर आई, पहलवान समझ गया कि इस तरह से बहुत से सिपाही मारे जाएंगे।
1: दुश्मन के किले के साथ क्या किया?
0: एक मर्तबा नारा लगाता है और किले का दरवाजा जमीन से उखाड़ देता है।
1: दरवाजा कितना बड़ा था?
0: बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि 40 जंगजू मर्द भी उसे उठा नहीं सकते थे।
1: आपने तो कहा कि पहलवान हम जैसा था।
0: असल नुक्ता यहीं पर है। तुमने पहलवान का हाथ देखा, लेकिन पहलवान ने ये काम अल्लाह के हाथ से किया। याद रखो कि हर बड़े काम से पहले हमेशा अल्लाह ताला को याद करोगे। इस तरह हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है।
1: आपने पहलवान का नाम नहीं बताया।
0: पहलवान?
2: ये खैर का पहलवान जिसका नाम बार बार लेते हो, झूठ भी बोलता था क्या? जनाबे वाला, अली ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरे दिल का खून कर देना।
0: ये लो, अपने बाबा के पास जाओ।
3: काफी है, आराम करो।
2: क्या तुम खुद नहीं कहते हो कि अली रसूल के कलाम को अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे? क्या झूठ बोलना गुनाह कबीरा नहीं है? हनीफ के बेटे फिर क्यों तुम्हारी जबान झूठ बोलती है?
4: बानो सुनिए, सब आप दोनों को देख रहे हैं।
2: मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अगर तुम्हारा ये बर्ताव और अखलाक उसके मकतब का नतीजा है तो अल्लाह का हजार शुक्र है कि मैं अलवी नहीं
4: हूं। अस्तग़फिरुल्लाह, शैतान बीच में आ गया है, इसलिए इस तरह शोर शराबा कर रही हो।
5: आप दुल्हा दुल्हन हैं और हज के लिए जा रही हैं, जरा देखो तो किस तरह कांप रही है।
0: आप तशरीफ ले जाएं, कोई सामान न रह जाए, कल निकलेंगे।
5: चलिए चलिए यहाँ से,
4: चलिए चलते हैं।
5: चलिए,
4: मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, कल लौट जाऊंगी। हिलाल,
0: कमरे में बात करेंगे।

0: मैंने क्या किया है जो इस तरह सबके सामने झगड़ा कर रही थी? कोई बात कहनी है तो अकेले में कहो, मैंने कौन सा झूठ बोला है?
1: इश्क और मोहब्बत का ढोंग इसलिए किया ताकि वो खत सलामती के साथ पहुंचाओ। सही कह रही हूँ ना मैं? कितनी बेवकूफ हूँ मैं, कितनी पागल हूँ मैं। मैं समझ रही थी कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारे हाथों की गुड़िया हूँ हिलाल। पाक और सफेद एहराम के नीचे कत्ल का सामान हज पर ले जा रहे हो। तुमने वो देखा कि खत वालों का क्या अंजाम होता है?
0: इतनी बेचैन मत हो, अभी तो तबीयत संभली है। जो कुछ कह रही हो

0: वो तुम्हारा हक है। हम हज पे जा रहे थे और माँ अपनी शर्त कबूल किए बगैर हमें इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हें खत मिल गया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बताता हूं तुम इसी तरह बेचैन होती हो। कूफे के हालात तुमने खुद देखे, सिर्फ यही सफर तुम्हारी जान बचा सकता है।
1: हिफाजत और इस तरह अगर जिंदान के दरवाजे पे शोर शराबा न होता तो तुम्हारा सब कुछ फाश हो जाता और खत उनके हाथ लग जाता। इतना भी ना सोचा कि कैसी मुसीबत हमारे इंतजार में है।
0: फिलहाल तो किसी परेशानी के बगैर दरवाजे से गुजर गए, अब किस चीज का गम है?
1: इस बात का गम है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे साथ रहने के शौक में हज का फैसला किया है और तुम भी बाकी मर्दों जैसे खुदगर्ज, बेख्याल और बेगैरत हो।
0: बहुत बेइंसाफ हो, बहुत। कोई जानता हो या ना जानता हो, पर अल्लाह जानता है तुमसे मेरा इश्क सच्चा है। मैंने बताया था कि मैं मजबूर था। तुम जानती हो कि तुम्हें चाहता हूं, इसीलिए ऐसा कह रही हो।
1: बस करो हिलाल, पुरानी बातें ना दोहरा।
0: तुम दोनों ने मुझे सिलबट्टा में रखा है। हावन का पत्थर मां और हावन का दस्ता तुम, जो हर रोज मेरे सर पर मारती हो। याद रखो, जो खेल तुम दोनों ने शुरू किया है उसमें हारने वाला मैं हूं। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, एक पुरसुकून सफर से भी मैं महरूम हूं। तुम्हें चाहने की हर रोज एक नई कीमत चुका रहा हूं। कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, मेरे इश्क पर शक ना करो। जाने के लिए तैयार है।
2: अल्लाह आपकी हिफाजत करे।
0: अपना सामान उठा लिया है?
3: जी, आपका जो
0: है। अहमद, किसी का सामान ना रह जाए, अगर मदद चाहिए तो उनकी मदद करो।
4: जी जरूर।
0: आइए, मैं मदद करता हूँ। चलने के लिए तैयार हो जाओ।

0: ध्यान से सुनो, जैसा तुम देख रहे हो इस कपड़े में कोई बटन वगैरह नहीं है। अगर शरारत करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी।
1: हे अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। खाला हंसिए नहीं बल्कि दुआ कीजिए।
2: खुदाया हमारे हाजी की इज्जत रखना।
0: अपने बाबा के पास जाओ। माशा अल्लाह, खुदा कितना खुश होगा तुम जैसे।

0: जब तुमने कहा मेरी मोहब्बत पर शक न करो और मेरे साथ रहो, अगर तुमने ये झूठ भी बोला है तो बहुत अच्छा झूठ था, वहीं तुम्हें माफ कर दिया।
1: खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अपने कपड़े ठीक कर लो।

0: क्या किसी को ढूंढ रहे हो?
1: सुनो भाई, रसूल खुदा के नवासे कहाँ?
2: वो तो चले गए।
1: चले गए कहाँ?
2: उनके मकसद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 8 दिलहिज्जा का सूरज निकलने से पहले पूरे कारवां के साथ निकल गए।
1: तेजी के साथ जाऊं तो उन तक पहुंच जाऊं।
2: आप तो मुहर्रम हो गए हैं, कहां आमाल खत्म होने तक आप कहीं नहीं जा सकते। दुआ की गुजारिश।
0: अब क्या करोगे?
1: अगर इमाम मिल गए तो ठीक, वरना मदीने जाएंगे उम्मुल मोमिनीन से मिलने के लिए।
0: उम्मुल मोमिनीन?
1: जनाबे उम्मे सलमा खत उन्हें देंगे, फिर वो जो ठीक समझेंगी, इस तरह हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा।

0: ऐ मोमिनो, मीसम के बाद जिंदा रहोगे और मेरी सच्चाई पर गवाही देना। मैं काबा और उसके खुदा की कसम खाता हूँ, कूफे में खजूर के 9 दरख्तों में से सबसे छोटे दरख्त पर मुझे फांसी देंगे और मेरी जबान काटेंगे सिर्फ अली और आले अली की मोहब्बत के जुर्म में। ऐ अहले ईमान, गवाह रहना।
1: जब से मैं उसे जानती हूँ, रोज अपनी मौत का जिक्र करता है और अपनी जबानी खजूर के बारे में बताता है। क्या ये बातें उसकी झूठ की गवाह नहीं? जरा बताओ तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जिसे मीसम को मारते वक्त उसकी बातें याद ना होंगी।

0: अमीर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तुम्हें गिरफ्तार करके कूफा ले जाना है।
1: अगर तुम्हारा मकसद मैं हूं तो बताओ किसकी तरफ से आए हो? हिलाल, हिलाल।
2: शर्मसार हूं जनाब, शर्मसार हूं। अगर तुम्हें मुझसे काम है तो इन्हें छोड़ दो।
1: इसे हाथ ना लगाना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो।
2: इनसे इल्तिजा ना करो।
1: इसने क्या किया है?
2: मेरी अमानत पहुंचा देना।
1: क्या किया है इसने? मुझे भी इसके साथ ले जाओ, मैं भी इसके साथ ही हूँ, मुझे ले जाओ। हाथ खोलो मेरे, मैंने कहा हाथ खोलो। कारवा वालों से कहना कुफा की तरफ चल पड़ो, मेरे वालिद तक हिलाल की गिरफ्तारी की खबर पहुँचाओ। कहना नायला में बिच्छू के डसने की वजह से जल आने की ताकत ना थी, यहाँ तक के गनी साथ लेने की हिम्मत भी ना थी। जल्दी करो,

0: मेरे लौटने तक यहीं रहो, भूखे ना रहना। सलाम।
1: सलाम।
0: तुम्हें मालूम है कि उम्मे सलमा का घर कहाँ है?
1: मेरे साथ आइए।

0: यही है उम्मे सलमा का घर।
1: शुक्रिया
0: जी।
2: या अल्लाह या अल्लाह, सलामुन अलैकुम हिलाल की आंखों के नूर, हज कबूल हो बेटी।
1: सलाम, माफ कीजिएगा, सफर की थकावट और भूख की वजह से आपको सुबह देख ना पाई।
2: कोई बात नहीं बेटी, अच्छे दर पे आई हो। जैसे ही निवाला उनके हाथ से लोगी, तबीयत संभल जाएगी। अरीफा और मोमिना है, हर दर्द का चेहरा उनकी मुट्ठी में है।
1: खलल का बाइस तो नहीं हो?
2: आज तक इस घर का दरवाजा किसी पर बंद नहीं हुआ है। तशरीफ ले जाए। सुनो मेरी बेटी, परेशान न होना, जब तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो खुद अपनी आंखों से देखोगी कि किस तरह अल्लाह अपने खुदाई अख्तियारात से हर चीज पर नजर रखता है। तुम सिर्फ अपना और हिलाल की अमानत का ख्याल रखो और किसी की फिक्र ना करो। फी अमानिल्लाह।

0: बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे पर चमक लौट आई है। जब सूप का प्याला खत्म करोगी तो नूरुन अला नूर हो जाएगा।
1: अगर हिलाल से वादा ना किया होता तो आपकी जहमत का बाइस ना बनती।
0: मेरी बेटी कौन सी जहमत? काश आसमान से कोई फरिश्ता आता और वो बताता कि मैंने कौन सी नेकी की है कि आज मेरी तकदीर ये थी कि तुम जैसी परी सूरत से मुलाकात करूं। बहुत खुश नसीब है ये उम्मे सलमा।
2: खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि अगर कोई काम है तो मैं बजा लाऊं।
0: नहीं नहीं, कैसा काम? मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा भूखा सो गया है। सूप तो हर किसी के लिए बना है, खुद खाओ, बच्चे को भी खिलाओ, उसके बाद चली जाना, समझ गई?
2: जी अच्छा,
0: खुदा हाफिज़।

0: मेरे हिलाल को गिरफ्तार करके कूफा ले गए हैं। उस पर यह खत पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मैं उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। करार यह था कि यह खत हुसैन इब्ने अली के हाथ में पहुंचे, जो ना हो सका।
1: अल्लाह कबूल करे। तुम समझो कि उनके हाथ पहुंच चुका है।
0: इमाम के शियों के लिए मुबारक हो। मेरा नाम तो इस खत में नहीं, इतना भी नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या कर रही हूँ।
1: तुमने अपनी जान खतरे में डाली और किसी भी वजह से सख्ती बर्दाश्त की तुमने। जिस हुसैन को मैं जानती हूँ, किसी भी शख्स का एहसान बाकी नहीं रखते वो।
0: मैंने आपको परेशान कर दिया क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी?
1: नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। नबी का लखते जिगर बयाबानों में और मैं घर में अमन व अमान में।
0: परेशान ना हो, कूफियों के मेहमान हैं और वहां भी उनके सीना से पर कम नहीं है।
1: इस सफर का कोई मकसद और मंजिल नहीं, इसकी मंजिल कयामत खेज है। सुना है कि इमामत की रिदा अमानत छोड़ कर गए हैं।
0: अच्छा, इसका क्या मतलब?
1: यानी उनकी माँ फातिमा मर्जिया अज़ा का लिबास पहनकर हौज़े कौसर पर उनके इंतजार में

अगरचे तुम्हारी आंखों में नाराजगी दिखी, लेकिन इन हाथों पर फिदा जो मेरे बेटे हुसैन का खत मेरे लिए लाए हैं। बेटी तुम खुश नसीब हो, खुशबख्त हो, तुम्हें तुम्हारा दिल यहां लाया। यानी कि इससे पहले तुमने अपने जमीर को गुनाह से आलूदा नहीं किया है, इसके बाद भी अपने दिल की आवाज सुनना। उस हां की तरह जो तुम्हारे दिल से निकली और हिलाल के किस्मत पर

0: एक हफ्ते से हम यहाँ शहर के दरवाजे के पास इंतजार में हैं। चींटियों और टिड्डियों ने सारा सामान बर्बाद कर दिया है। जो कुछ बचा है उसे सूरज ने जला दिया है।
1: पहले ही दिन से बता दिया गया था, आप लोग आने की इजाजत रखते हैं, बाहर जाने की नहीं। अगर जा सकते हो तो बिस्मिल्लाह।
0: कहाँ जाऊँ मोमिन, मेरे बीवी बच्चे यहाँ नहीं है, कहाँ रहूँ और कब तक? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।
2: अगर वापस ना जाऊँ तो मेरे जानवर मर जाएंगे, और अगर यहीं रहूं तो वापसी का रास्ता नहीं है। मरजाना के बेटे, खुदा तुम्हारा बुरा करे, नहीं मालूम सुलह के लिए आए हो या जंग के लिए।
1: ए कमीने, क्या कहा? बे एहतरामी करते हो? हमेशा मेरे अमीर का नाम अदब और एहतराम से जुबान पर लाओ, अपनी औकात में रहो। तुमने गुस्ताखी की है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पकड़ो
2: उसे। क्या कहा मैंने? मैंने कोई तौहीन नहीं की है।
1: ले जाओ और अमीर की तौहीन करने के जुर्म में सजा दो, और इसके जानवर ज़बह करके पूरे कूफा में तकसीम करो, ताकि ये दूसरों के लिए बाइसे इबरत बने।
2: ए लोगों, मेरी मदद करो, मैंने कुछ नहीं किया है।
3: किनारे हटिए,
2: कोई तो मेरी मदद करो।
3: किनारे हटिए।
4: इतनी अफरातफरी किस लिए? कौन आ रहा है जो कयामत?
3: सच क्या है और झूठ क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी हुकूमत का अंदाज नौमान की तरह नहीं है, बहुत सख्ती के साथ हर चीज पर कड़ी नजर रखे है।
5: रो नहीं, सर ना पीटो, अब जबकि मीसम की बातें सच साबित हुई हैं, लिखो जो कुछ मैं कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले रहे हो। तुम कहाँ थे रोज़े गदीर जब साहिब उम्मत ने तुम्हारे दीन को कामिल किया, जिस वक्त अली का हाथ ऊपर उठाया और फरमाया मेरे बाद अली तुम्हारा मौला है, और फिर फरमाया जो कोई अली को दोस्त रखे अल्लाह का दोस्त है, और जो कोई अली से दुश्मनी करे अल्लाह का दुश्मन है। गदीर को तुमने भुला दिया है और रसूल के कलाम को पामाल कर दिया। मेरी बातों को तुम कभी भूलना मत, कभी न भूलना। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले ही रहे हो, लेकिन अब खुदा के वास्ते ये गलती कभी न करना। मस्जिदे कूफा का मस्जिद कूफा का मेहराब अली के खून से खिजाब हो गया, खून अली से खिजाब हो गया। और जहरा का घर लुट गया,
1: अमीर अब्दुल्ला बिन जियाद के हुक्म पर इस झूठे की जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा, इसके हाथ पांव काटूंगा, और इस कतर इस दरख्त पर लटका रहेगा कि इसका जिस्म परिंदों की खुराक बन जाए।
6: अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तुम्हारे अहमक दुश्मन तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे।
5: मेरी जबान काटो, खाक हो इस जबान पर के मुंह में हो और अली का जिक्र ना करे। मेरा गोश्त और हड्डियाँ अगर परिंदों की खुराक बन गई, तो इस तरह हर परिंदे की गिज़ा अली का नाम होगा, जो मीसम के जुनून से उनके खून में जोश भरेगा। अशहदु अल
1: मतलब उनका दायां हाथ और बायां पांव काट दो।
7: अल्लाह की कसम, शबर रोज यही कहा करता था, जुबान काट कर खजूर पर लटकाएंगे।
6: या का ना अब तू वहा का नस्ता

0: कोई बच्चा पैदाइश के वक्त बदबख्त नहीं होता, हम खुद ही अपनी किस्मत और इकबाल को लात मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस रोज से तुमने मेरी बहन से शादी की है, बदबख्ती की मोहर तुम्हारी पेशानी पर लग गई है। तुमने लालच की, लालच।
1: भले 100 दिन तक मेरे कान में तुम यही कहते रहो, मेरी बात वही है जो मैं कह चुका हूं। कोई खत नहीं था मेरे पास।
0: अच्छा, बहुत चालाक हो। अम्बियों से लड़की लेकर उनके माल और दौलत से अपनी हैसियत बनाई, फिर हुसैन बिन अली के लिए खत लिखा, आइए और हुकूमत कीजिए, गदा समझाए।
1: पहले बासित और अब मैं, तुम्हें बहाने की तलाश है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सही कहा ना?
0: सबूत? क्या हमें मालूम नहीं कि तुम हुसैन बिन अली के लिए खत लेकर जा रहे थे? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे दिन रात औहद की बेटी के साथ अमान व अमान में खुश रहे हैं।
1: इंसान की तरह बात करो तो समझ आए।
0: तुम सच में गधे हो, तुम सच में गधे हो।
1: अपनी बिरादरी साबित करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर चुका हूं तुम्हारे कहने पर।
0: अभी एक काम बाकी है, तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए इब्ने ज़ियाद को मनाने में मेरी खाल उधड़ गई, लेकिन अमीर ने एक छोटी सी शर्त रखी है, तुम्हें लश्करे हुसैन के खिलाफ फौज का कमांडर बनना है, समझे?
1: नामुमकिन है।
0: मत डरो, हुसैन के पास 300 साथी भी नहीं है, उसकी शिकस्त यकीनी है।
1: तुझ पर तेरे बाप और इब्ने ज़ियाद के बाप तीनों पर लानत है। जाके कह देना, हिलाल ने कहा है मैं अपने इमाम से मुकाबला नहीं करूंगा, मेरा सर काट दो, बात खत्म।
0: कान खोल कर सुनो, हुकूमत के कायम के लिए हम अपनी खवातीन का गला भी काट सकते हैं। हुसैन इब्ने अली क्या चीज है?
1: बेगैरत!

0: अजब आ गए।
1: जहन्नुम में खुश आमदीद अब नहीं हूँ।
2: हाँ सब पहुँच गए, जल्दी करो जल्दी करो।
3: नई खबर क्या लाई हो अकीला?
2: मेरा हिलाल कहाँ है?
3: जिंदा ने इब्ने ज़ियाद।
2: अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ।
3: इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो।
4: निसम के जनाजे को चुराने वाले का नाम बताऊंगा।
3: सामिया को मेरे हवाले कर दो, उससे हिसाब चुकता करना है।
2: फूफे वालों की बातों को सुनो लेकिन यकीन हर किस मत करना।
5: उसकी कब्र कहाँ तलाश कर रहे हो? उसकी कब्र यही है।

लोग ऐसे जीना चाह रहे हैं, ज़िंदगी वैसे गुजार रहे हैं, कपड़े वैसे पहन रहे हैं, शक्लें वैसी बना रहे हैं। वो इसका मतलब क्या है कि ये ज़ाहरी मादी तरक्की कर रहा है लेकिन हकीकतन तनज़ुली की तरफ जा रहा है। अब कौन बचाएगा इसको? कोई और नहीं बचाएगा, वही सिस्टम, वही निज़ाम, निज़ाम इलाही जो है। क्यों? क्योंकि वो इंसान की बुनियादी और उसकी रूही तरक्की के लिए आया है। उसके नज़दीक ज़ाहिर जैसा भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ने बताया कि डेजिग्नेशन और पोस्ट जो है वो आपके बातिन को डिफाइन नहीं कर सकते। आपका बातिन कमाल पर अगर है तो आप कोई भी हो, आप कबूल है आपको। बेहतरीन मिसाल करबला है, बेहतरीन मिसाल करबला है। सहाबी है तो भी एक ही डेजिग्नेशन है, ग़ुलाम है तो भी एक ही डेजिग्नेशन है, वो भी वही है, वो भी वही है। हैश टैग क्या है? असहाबुल हुसैन। उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि बातिन कमाल पे पहुंचा हुआ है। जब बातिन कमाल पे पहुंच जाए तो ग़ुलाम हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, बूढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसे खुदा ने इंतखाब किया है, वही रूह को उस कमाल पे लेके जा सकते हैं। तो अज़ाने मोहतरम, हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी रूह की खुराक के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। बदन की खुराक के लिए, बदन के खाने के लिए हम कितनी तगोदो करते हैं। मसलन कोई आदमी कुछ नहीं खा सकता और कुछ खा सकता है तो बड़ी दूर से मिलता है, कितनी दूर जाता है, क्या क्या लेके आता है, ये प्रॉब्लम है या इससे एलर्जी है या यूँ नहीं खा सकता, या मसलन जायका है, दिल चाह रहा है मसलन फलाना खाना खाया जाए। अब चाहे 2 किलो 2 घंटे की ड्राइव पे हो, जाता है आदमी, जाहिर है, क्योंकि इंसान को बहरहाल जायके से मोहब्बत है। लेकिन जायका कितनी देर का है? बस ज़बान पे रखा और ख़त्म, उसके बाद जायका है ही नहीं। लेकिन रूह को जो खुराक चाहिए, रूह को जो लज्जत चाहिए, उसके लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। रूह की लज्जत क्या है? रूह की लज्जत यह है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान क्या कर रहे हैं? तस्बीह कर रहे हैं। रूह की लज्जत यह है कि इस तस्बीह को सुने, इस जिक्र को सुने। ये जो कायनात जिक्र कर रही है, जिक्र में मशगूल है, ये जिक्र मेरी रूह क्यों नहीं सुन रही है? रूह की लज्जत यह है कि जब वो अल्लाह अकबर कहे नमाज में तो खुशू और खुजू उसके ऊपर तारी हो जाए, वो अपने आप को अपने रब के सामने हाजिर पाए। ये रूह की लज्जत है। खूब ये लज्जत कि जब सब सो रहे हों और मैं उस वक्त उठूं और मैं सर सजदे में रखूं और सुबहाना रब्बी अलाला वबिहम, ये रूह की लज्जत है। ये रूह की लज्जत है कि मेरे वजूद से खैर दूसरों तक पहुंचे। ये रूह की लज्जत है कि जब लोग आपको देखें तो उनके चेहरों में मुस्कुराहट आए। रूह की लज्जत, तो हम इस रूह की लज्जत के लिए कितने कोशिश कर रहे हैं और कितना हम तवज्जो है हमारी। असल बाज़ औक़ात इंसान की तवज्जो ही नहीं है, असल मुझे पता ही नहीं है कि ये भी है कि नहीं है। बिल्कुल जैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं गाड़ी में, मोबाइल में, उसको पता ही नहीं होता। अच्छा ये भी है, हाँ भाई ये भी है, मतलब आप कभी एक्सप्लोर तो करें, इसके अंदर ये भी है, तो उसको पता ही नहीं होता। बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी यूज़ करता है, उसको यही नहीं पता होता कि ये फ़ीचर भी है। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स हैं मगर हमें पता ही नहीं है, कभी हमने ट्यून ही नहीं किया अपने आप को। ट्यून तो करें, फिर परवरदिगार आपको बताएगा कि कायनात की हकीकत क्या है। उस वादी में आए तो सही जो असल जलवा इलाही है, जहां आयात इलाही आपको नज़र आएंगे। क्योंकि हम फंसे हुए हैं सुबह शाम के मामलात में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, फिर रिश्तों में, घर में, ये चीज़ों ने हमें फंसा के रखा हुआ है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है, इस्लाम मना नहीं कहता, बहरहाल रिश्ते भी इम्पोर्टेंट हैं, काम भी, रिश्ते हलाल भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मगर ये फॉर टाइम बीइंग है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए है। आप थोड़ी देर के लिए अपना सब कुछ क्यों दे रहे हैं? जो हमेशा जहाँ रहना है उसके लिए क्या कर रहे हैं? और उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यही ज़िंदगी में आपने स्पेस बनानी है अपनी, यही टाइम जोन आपने लेकर चलना है। आप देखें कि आयतुल्ला काजी तबा तबाही रिजवानुल्लाह ताला अलैह, आयतुल्ला बहशत के भी उस्ताद हैं, अल्लामा तबा तबाही के।

दूसरे शख्स को क्यों नजर आए, नहीं वो डॉक्टर है। आप क्या डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी छुपाएंगे? तो अगर आप छुपाएंगे तो फिर आपका इलाज कौन करेगा? तो ये डॉक्टर्स हैं रूह के, ये इसलिए नहीं है कि आपकी बीमारी को दुनिया को बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका इलाज और ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने रूह के ऊपर काम करना शुरू करे, और जब इंसान, अल्लाह करे कि उसको ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स मिले कि जो उसकी तरबियत कर सके, जो उसके किरदार को बना सके, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माशरे में जो इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रूही मुश्किलात हैं। बदन की मुश्किलात आप हल कर लेते हैं, सोसाइटी हर तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, इल्मी तौर पर बढ़ रही है, फाइनेंशियल भी बढ़ रही है, सिस्टम बढ़ा, मुश्किल रूही है। ये रूही मुश्किल को कौन हल करेगा? इसी के लिए बहरहाल मैं कुछ हदीस के हिस्से हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने हैं, हो सकता है कुछ आज पेश कर सकूँ, कुछ कल पेश करूँ। बहरहाल वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं होता, महदूद ही होता है, महदूद इंसान महदूद ही गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन क्योंकि जिक्र ला महदूद का है तो इसीलिए वो ख़ुद टाइम को भी स्ट्रेच कर देते हैं और गुफ्तगू को भी जो है वो बढ़ा देते हैं। इमाम रज़ा अलैहि सलातो सलाम दुरूद भेजें मोहम्मद वालेल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वालेल्लाह। इमाम की एक हदीस है और ये मैं पिछले काफ़ी अरसे से एक हदीस को बयान कर रहा हूँ, हदीस बहुत खूबसूरत है और काफ़ी जगह मैंने इसको बयान भी किया है, मुझे नहीं पता ऑनलाइन आप में से किसी ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन बहरहाल ऑनलाइन सुनने का लुत्फ अपनी जगह और फिज़िकल सुनने का लुत्फ जो है वो अपनी जगह होता है। और हदीस जो है वो उसका बैकग्राउंड से पहले मैं उस हदीस में वारिद हूँ, ये डायरेक्टली काम करती है इंटरनल सॉफ्टवेयर पे, अंदर जो इंसान का बातिन है, इंसान का जो इंटरनल रूह जो है, रूह बेसिकली एक आइडेंटिटी है। उस रूह के तीन पार्ट मैं नहीं कहूँगा, लेवल आप कह लें, एक लेवल उसका नफ्स है, नफ्स इंसान जिसे कहता है, उसकी अपनी कैफियत है, नफ्स की भी अपनी टाइप्स हैं, उसके अंदर क्या क्या है, नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमईना है, कॉमनली ये तीन नफ्स डिफाइन होते हैं, वरना इसके अलावा भी बहुत नफ्स को डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो उसका थोड़ा सा और हायर लेवल है वो अकल है, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, दुनिया इंटेलेक्ट कुछ और कहती है, दुनिया इंटेलेक्चुअल सी डेफिनेशंस को कुछ और कहती है, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो थोड़ा सा सेकुलर हो, लिबरल हो, थोड़ी सी आई टेढ़ी मेढ़ी बातें करे, लोग कहते हैं बड़ा इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहा है। दुनिया की डेफिनेशन में इंटेलेक्चुअल अलग है, मगर अकल जिसको कुरान बयान कर रहा है, जिसको हदीस बयान कर रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसूल काफ़ी का पहला चैप्टर अकल और जहल की गुफ्तगू से शुरू होता है। अकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुरान जहाँ जहाँ कह रहा है कि तुमने नहीं देखा हमने इसको कैसे बनाया, इसको कैसे बनाया, और ये अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, तो खुदा अकल वालों को यानी टारगेट कर रहा है, मुखातिब कर रहा है, और इनमें अकल नहीं है, ला याकलून, और ये अकल से नहीं सोचते। वमा अदराका मा, कुरान कई जगह इस बात को कि ये तुम दर्क नहीं कर सकते, दर्क क्या नहीं कर सकती, अकल नहीं कर सकती, अकल की ये कैपेसिटी है, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये अकल करती है। एक अकल ये है जो बॉडी के अंदर है, ब्रेन, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अकल है उसकी गुफ्तगू है। बाज़ औक़ात इंसान जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, अकल बच्चों वाली है इसकी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अकल बालिग नहीं हुई, खुद बालिग हो गया, अकल बालिग नहीं हुई। ये है बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, बाज़ औक़ात छोटा बच्चा होता है, अच्छा बड़ों जैसी बातें करता है, क्यों, इंटरनल अकल अपलिफ्ट हो चुकी है इसकी। तो अकल की गुफ्तगू है। आखिरी जो लेवल है सोल का, वो कल्ब है, वो कल्ब कि जो कयामत में सालिम जाएगा वही फ़ायदा पाएगा। अब कल्ब की अपनी डेफिनेशन है, कुलूब की मर्ज है, कुलूब के अंदर क्या क्या है, बहरहाल आयतुल्ला तहरानी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कुलूब पर जो है वो बहस की हुई है। मेरा हदफ बिल्कुल इन तीनों की तरफ से सिर्फ मुकदमाती था। हदीस जो इमाम की है वो ये फरमाती है कि जिस मुसलमान की अकल सालिम हो उसकी कुछ निशानियाँ हैं,

को इसके अंदर बहरहाल प्रॉब्लम पाई जाती है, तो दूसरे को इफेक्ट ना करे आपकी बुराई। कि जब इंसान किसी से मिलने जाए और ये ना हो, बाज अवकात इंसान खुदा ना खास्ता ऐसी है कि भाई ये तो मिले तो कोई ना कोई नुकसान होता ही है, कोई ना वक्त कुछ नहीं तो वक्त ज़ाया होता है भाई। वक्त ज़ाया करना आसान है, वक्त ज़ाया करना बहुत बड़ा लॉस है। बिकॉज़ वी डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, हमें लम्हे लम्हे का एहसास नहीं है। हमारी ज़िंदगी बर्फ़ आइस, बाहर गर्मी में रखी हुई है, बर्फ़ पिघल रही है, ज़िंदगी पिघल रही है। हमारा लम्हा लम्हा खुदा की बारगाह में स्क्रूटनाइज हो रहा है, हमें एहसास ही नहीं हो रहा। हम गप्पे मार रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, पता नहीं टिकटॉक और ये वो, हमें पता ही नहीं है स्कैन हो रहा है। अब आपके वजूद से जो है वो कोई ना कोई अगर गलत चीज़ जा रही है, किसी का टाइम ज़ाया हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आप दूसरे को लॉस दे रहे हैं। ये बहुत इश्यू है सोसाइटी के अंदर कि हाउ वी आर मैनेजिंग अवर टाइम एक्चुअली। अब इसका मतलब ये नहीं मतलब अब आप सिर्फ वर्क बैठे यार यूँ करके बैठे रहो, हमको बुराई भी मतलब हमको मजाक नहीं करना, हंसना नहीं है ना, असल आप वर्थेबल टाइम हो। यानी आप बोलो कि हाँ यार अगर इंटरटेनमेंट भी हुई तो कम से कम अच्छी थी, हलाल थी, वक्त अच्छा गुजरा। खूब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम को किल ना करें। एक आलम दीन इबलीस सामने मिल गया, इबलीस को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कहा नहीं नहीं, बहस बहस बहस बहस, इबलीस हार गया। कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कहा मुझे पता था मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कहा फिर क्यों? कहा मैं आपका टाइम लेना चाहता था। टाइम इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमें टाइम का अंदाजा नहीं है। इंसान एक लम्हे में सदियों का फासला तय कर सकता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो एक लम्हे में क्या कर सकता है। एक आयत कुरान की उसके ऊपर रिवील हो जाए, वो असल कोई और इंसान बन सकता है, लेकिन क्योंकि उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि उसका टाइम कैसा है। तो शैतान आपके टाइम को ज़ाया करता है, वो किसी न किसी तरीके से आपको इंगेज करता है। मतलब आप सोने जा रहे हैं, अच्छा थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात रीलें देखे देख देख, अब आँखों में दर्द शुरू हुआ, बैठ गए। यही टाइम वुजू कर लेते, तीन दफ़ा सूरह तौहीद पढ़ लेते, दुरूद पढ़ लेते, सो जाते, इबादत भी हो जाती, सारी रात इबादत में गुजरती, कुरान भी ख़त्म हो जाता, अंबियाओं को भी सलाम हो जाता। क्या कर, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम, लेकिन नहीं, क्योंकि शैतान आई वॉन्ट टू इंगेज यू, वो चाहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर ये दो क्वालिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अब आप के वजूद से पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अब आप बोलेंगे मैं तो पॉजिटिव जाता हूँ, अंदर से नेगेटिव हो जाता है, या वो खातून भी ये कह सकती हैं कि मैं पॉजिटिव होती हूँ, ये आते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए, आइदर यू आर चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव और नॉट, इट्स अप टू यू कि आप अपने वजूद से खैर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, या नहीं मैं इमाम बारगाह में तो बहुत अच्छा, बिस्मिल्लाह इल्तमास दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, घर गया इंसान का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ इंसान फेल होना शुरू हो जाता है। और देखें, शैतान आपको कहीं घसीट के लेके नहीं जाएगा, शैतान आपकी ज़िंदगी में आके ही आपको बर्बाद करेगा। तो वो कहीं भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। अभी आपको देखना है कि मैं अपने वजूद से पॉजिटिविटी दे रहा हूँ या नेगेटिविटी दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। ये दो निशानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दो और बयान करता हूँ, बहरा लाभ से इल्तमास दुआ। तीसरी जो है वो ये है कि ये बहुत हर चीज़ देखे, इमाम इंटरनल स्ट्रक्चर से वाकिफ़ है इंसान के, बेशक 1400 साल पुरानी बात हो, लेकिन जुमला ऐसा है कि वो कयामत तक के लिए जो है ना वो अमल है। वो इमाम ने क्या फरमाया, इमाम ने कहा कि सालिम अकल की तीसरी निशानी क्या है, कि जब इससे किसी और की छोटी सी या कम जो है वो खैर डिफाइन की जाए या नेकी डिफाइन की जाए, तो ये उसको बड़ा शुमार करे। यानी मिसाल के तौर पर बोलता हूँ कि कोई आपको आगे कहे

जी फलाने शख्स कम्युनिटी में मतलब कभी कभी आते हैं और मसलन जूते सीधे करके चले जाते हैं, छोटा सा काम। आप क्या बोले? नहीं नहीं बहुत बड़ा काम करते हैं। वो आते हैं, जगह को भी साफ़ करते हैं, जूते भी सही करते हैं, चीज़ों में भी डिसिप्लिन करते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। जूते उठाना छोटा काम है किसी का, जूते उठाना बड़ा काम है। यानी सामने वाले ने कहा कि वो छोटी सी नेकी है, लेकिन आप उसकी छोटी सी नेकी को बड़ा शुमार कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि बस ये तो कोई काम ही ना, बड़ा काम है फलाना, वो फलाना, वो तो बस मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। वो उस किताब को पढ़ाते हैं कि जिससे बेहतर कोई किताब नहीं, जिससे बेहतर खालिक कोई नहीं, जिससे बेहतर ज़बान कोई नहीं, जिससे बेहतर तालीम, वो पढ़ाते हैं। यानी आपने छोटी चीज़ को क्या किया? बड़ा कर दिया। दूसरे की छोटी सी नेकी को बड़ा शुमार करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर के अंदर बस आपको किसी ने बोला कि जी घर के अंदर ये काम करते हैं, तो आप बोले ये बड़ा काम करते हैं, छोटा काम नहीं करते आप। जौजा ने कोई काम किया, आप उसको बड़ा शुमार करें। बच्चे ने कोई काम किया, आप उसको बड़ा शुमार करें किसने बड़ा काम किया है। चौथी, और आज के लिए आखिरी काफ़ी है, चौथी कहती है, वरना आप बोलेंगे हम तो एक एक पे गिरते जा रहे हैं, घर जाते तक कोई साले मगल लेके नहीं जाएगा। तो चौथी, और वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो क्या है कि अपनी बड़ी नेकी को छोटा शुमार करना। यानी क्या काम करते हैं आप? नहीं मैं तो कुछ नहीं करता। नहीं नहीं आप, नहीं नहीं मैं तो, ये बड़ा मुश्किल है। ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल है। आपके सामने किसी की तारीफ़ की जाए, थोड़ी देर आप सुनते हैं, ख़ास तौर पे मौलवी, मौलवी की तारीफ़ नहीं सुनता। आप मौलाना क्या मजलिस पढ़ के गए थे मौसे? अच्छा, ओह। अब अंदर सोच रहे हैं यार इसको मेरी मजलिस समझ में नहीं आती क्या? दूसरे की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती आदमी को, यह कॉमन है। आप बोले फलाना इतना काम करता है कम्युनिटी में, ब्रूम भी करता है, झाड़ू बुलाता है, लाइटें ऑन करता है, करता है, यार ये कोई काम है यार? को वैसे भी फारिग होता है, बाकी काम करते रहता है। नहीं, आप उसको बड़ा शुमार करें। और अपनी, अगर किसी ने बोलो उसको, ओ भाई यार ये आपको पता नहीं है, वो जो असल काम है वो मैंने ही किया था, पीछे से काम मैंने ही किया था, फलाना काम मैंने ही किया था। खूब, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी इसी से बिल्ड होती है। अब आप देखें कि उलमा इकराम, आइम्मा ने तो ये तालीम फरमाया, असहाब का किरदार अपनी जगह। शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के, जिन्होंने मफातीउल जना जो है वो कंपाइल की, और आपको जानते हैं कि मफाती हर जगह मौजूद है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, फ्रेंच में, जर्मन में, दुनिया की हर जबान के अंदर ट्रांसलेट, दुनिया की जितनी एप्लीकेशन हैं, duaz.org, शिया टूल किट, डिवाइन पल्स, सब क्या है, सब मफाती है। यानी दुरूद भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप देखें कि कैसा काम किया कि पूरी दुनिया के अंदर किताब मौजूद है। क्या चीज़ थी जो ऐसी हो गई कि एक किताब पूरी दुनिया में है? ना हो तो शिया ही नहीं है, उसके बगैर ना अमाल है, ना दुआएं हैं, ना ज़्यारतें हैं, सब। जब उलमा बयान करते हैं कि उनके वालिद साहब मस्जिद से वापस आए, तो उन्होंने अब्बास, शेख अब्बास कुम्मी से कहा कि मैं मग़रिब इशा की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, वहाँ जो मौलाना है वो नमाज के बाद एक किताब से हदीस बयान करते हैं, यानी गुफ्तगू करते हैं थोड़ी देर के लिए, और क्या बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं बेटा, काश आप भी वैसी गुफ्तगू करते। सादे आदमी थे उनके वालिद साहब। वो जो किताब है जिससे वो आलिम पढ़ते थे, वो किताब शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी थी, मनाजिलुल आखरा, शेख अब्बास कुम्मी की किताब, उसी से वो पढ़ते थे, क़यामत का, बरज़ख़ के, इधर उधर के वाक़या। शेख अब्बास कुम्मी ने ये नहीं कहा। हम होते तो क्या बोलते, वालिद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये हमारी कैसटें सुन सुन के तो मौलाना बने हुए वो। नहीं, हम तो ऐसे ही बोलना था। नहीं, शेख अब्बास कुम्मी ने नहीं कहा। शेख अब्बास कुम्मी ने कहा

वाह बाबा मेरे हक में दुआ कीजिए। खूब ये क्या है, यानी दूसरे की नेकी और अपनी नेकी कोई शुमार नहीं करना, ये इंटरनल सॉफ्टवेयर है, एक्सटर्नल नहीं है। ये आपका आउटर डिफाइन नहीं कर सकता इन चीज़ों को। आपके ब्रांडेड कपड़े, आपके ब्रांडेड परफ्यूम, इसको नहीं डिफाइन कर सकता। ये आपका इंटरनल है। अब आप जितना बाहर खुशबू लगा रहे हैं, क्या अंदर भी इतना खुशबूदार है कि नहीं है? खूब ये ज़रूरी है कि मैं अपने आप बातिन को कितना खुशबूदार कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है जब ये खुशबू आएगी तो ये फिर खुशबू असल फैलेगी, और ये किरदार से खुशबू फैलती है कि लोगों को मस्त कर देती है। और यही तो वजह थी कि जो अपने अपने दौर में ऐसे शख्स थे तो फिर लोग उसी जगह खुशबू की तरह आगे पीछे घूमते हैं और उन्हीं को ढूंढते हैं और उन्हीं का ज़िक्र करते हैं, क्योंकि बहरहाल उन्होंने अपने आप को उस गुलिस्तान से कनेक्ट किया है जो असली गुलिस्तान है, वो गुलिस्तान कि जहाँ की पंखड़ियाँ भी पूरे जहान को खुशबूदार कर देती हैं। वो बहरहाल हम इस दौड़ में, इस वादी में वारिद हों ताकि हमें पता तो चले कि बहरहाल असल हकीकत क्या है ज़िंदगी की। और हम इंगेज्ड हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, हम खुद कंज्यूमर हैं, हमें कंज्यूम किया जा रहा है और हम कंजम्पशन पे लगे हुए हैं, जबकि हमें किसी और मकसद के लिए खल्क किया गया है। और मकसद ये है कि हम उसको पहचानें। और उसने खुद कहा कि मैंने असल कायनात को खल्क किस लिए किया है, किस लिए कि मुझे लोग पहचानें। और उसी पहचान के लिए 1,24,000 आए, फिर औलिया औसिया आइम्मा ले, क्या है वो पहचाना जाए। तो क्या ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ कर करके हम लोग उसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे? अब उसको नहीं पहचाना तो फिर किसको पहचाना ज़िंदगी में? अपने आप को पहचाना, अपने नाम को पहचाना ना, मैं तो लॉस्ट हूँ, वैसे भी मैं तो गुमशुदा हूँ और मुझे गुम हो जाना है एक दिन। मजनू शहर में आया और लोगों से पूछा कि लैला का पता क्या है? किसी ने कहा तुम कौन हो? हाँ मजनू। कहा मजनू हो, तुम्हें लैला का पता पूछना नहीं चाहिए था, तुम्हें लैला की खुशबू आनी चाहिए थी कि लैला कहाँ है। बात यही है कि जब ढूंढ ढूंढ कर दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? कहा मैं। फिर आवाज़ आई अभी तक मैं ही हो, अभी तक मैं हूँ, मतलब है तुम पहुँचे नहीं। फिर कई अरसे के बाद आया, फिर खटखटाया, कहा कौन? कहा तुम। हाँ अब अपने आप को फना कर दिया है। जिंदगी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, रजन बेकजाए, बस तस्लीम, कुछ नहीं हूं मैं, असल सब उसका है। एक लम्हा शिकवा नहीं है, एक लम्हा माथे पे बल नहीं आया, सब लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। मगर ये नहीं कहा हमने कोई बड़ा काम किया, नहीं, तकब्बल मिन्ना, खुदा हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। ये है कमाल, ये कमाल की वादी में हमें भी दाखिल होना है। और इमाम चाहता है यही है, इसका वादी में वारिद हो। बस अदारा ने मोहतरम, यही बहरहाल अय्याम है और मुख्तलिफ मुनासिबतें हैं, बहरहाल इमाम की हदीस थी तो इमाम ही की, क्योंकि अय्याम गुजरे हैं तो उसी की मुनासिबत से चंद बहरहाल तबर्रुकन आपकी खिदमत में। अय्याम आज़ा में आप मसाइब सुनते रहे और आगे भी सुनते रहेंगे कि इमाम ख़ास तौर पर 8वें इमाम जब अय्याम मुहर्रम के आते थे तो मुस्कुराना छोड़ देते थे और स्याह शॉल जो है वो अपने गले में डाल देते थे। और यबन शबीब के बेटे से जो रिवायात बयान हुई है मुहर्रम की, वो काफ़ी है। अब ये कैफियत इमाम की हमेशा रही है। इमाम ने अबा सल्त से यही कहा कि अबा सल्त

अगर तुम देखो कि जब मैं खलीफा के पास से आऊं और अबा मेरे सर पे हो तो समझ लेना कि मुझे जहर दे दिया गया है। बहरहाल इमाम को कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि इमाम को जहर दिया जाए, लेकिन बहरहाल इमाम ने अबा सल्त ने देखा कि इमाम आ रहे हैं और इमाम की अबा सर पर है, गोया इमाम को जहर दे दिया गया। जहर आहिस्ता आहिस्ता असरात अपने मुरतब करने लगे। इमाम जैसे ही दाखिल हुए तो इमाम ने देखा कि खुद्दाम गुलाम जो हैं वो खाना जो है वो तनावुल कर रहे हैं। उन्होंने इमाम को कहा, इमाम उसी हालत में भी दस्तरखान पे बैठ गए। उसके बाद इमाम उठे और इमाम अपने हुजरे में चले गए और दर्द की शिद्दत में इमाम तड़पने लगे। अपने बदन के जो है वो अपने ही बदन की तरफ लिपटने लगे। उसी तड़प की हालत में अबा सल्त क्या देखता है कि घर के सहन के अंदर इमाम तकी मौजूद है। पूछता है कि मौला आप कैसे आ गए? कहा, वही खुदा जो मुझे मदीना से यहाँ लाया है वही मुझे अंदर लेकर आया है। इमाम अपने बाबा की खिदमत में गए और उस हालत में अपने बाबा के सर को अपने जानू पे रखा और उसी जहर के असरात इतने शदीद हुए कि इमाम की रूह बदन से परवास करती है। इमाम को गुस्ल और कफन दिया गया। इमाम को खुरासान में दफना दिया गया। सलाम हो उस एक बहन पर कि जो इमाम की मोहब्बत में मदीना से चली थी लेकिन इमाम तक पहुंच ना पाई और इमाम की शहादत से पहले ही ज़ख्मी हुई और कुम में क़याम किया और दुनिया से चली गई। मैं कहूँगा, या हज़रत मासूमा, आप अपने भाई की मोहब्बत में आई मगर आपने अपने भाई को तड़पते हुए नहीं देखा। इमाम जहर में तड़प रहे थे, आपने नहीं देखा, आप कुम में रहीं और कुम में दुनिया से चली गई। मगर एक बहन चंद कदमों के फासले पर बहुत कुछ देखती रही है। हाँ, आज़ादारा ने मोहतरम, इमाम अपनी सवारी से ज़मीन पर आए। आप जानते हैं कि उस मकाम पर कि खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, वो मकाम थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जिसे जायगाए कत्ल कहते हैं, वो गोदी, वो जगह गोदी कत्लगाह, वो नीचे की तरफ है। अगर वहाँ से खड़े हों, गो के हरम बन चुका है, दीवार है, दरवाज़ा है, लेकिन तिल्ले ज़ैनबिया ऊंची जगह पर है। बहन उस ऊंचाई से देख रही है कि भाई ज़मीन पे उतरा है। दुश्मन के पास जो भी था, असदारा ने मोहतरम, आप में से कुछ लोग अरबईन से वापस आए होंगे, इस बात को महसूस कर सकते हैं कि दुश्मन के पास जो कुछ था उसने इस्तेमाल किया। किसी के पास तलवार थी, किसी के पास नेज़े थे, किसी के पास तीर थे, सब अपने अपने हिसाब से सैयदा की कमाई लूटते रहे। और वो बहन खड़ी हुई देख रही है। वक्त आया कि शिमर सीने पे बैठा है और उसने खंजर चलाना शुरू किया। कई ज़रबतें चलाने के बाद वो इमाम के सर को तन से जुदा न कर पाया तो कहते हैं उसने पुश्त से इमाम की गर्दन पे वार किया और सैयदा की कमाई को लूट लिया। और वो बहन चंद कदमों के फासले से देख रही है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। बस असदारा ने मोहतरम, ये मसाइब आप सुनते रहते हैं, मैं तबर्रुकन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। उस हालत में कि सर को लेके जा चुके हैं ये और शाम गरीबा आ गई और मक्तल में लाशें बिखरी पड़ी हैं, रात जैसी गुजरनी थी गुजर गई। 11 मुहर्रम को लुटे हुए कारवां को मक्तल के पास से गुजारा गया। अज़ादारा ने मोहतरम, जैसे ही इस सर बुरीदा बदनों से ये कारवां गुजरा है, मैं कहूँगा या इमाम तकी

आपने अपने बाबा को तड़पते हुए देखा मगर बदन सालिम था। जैसे ही गुजरा इमाम सज्जाद की नज़र अपने बाबा के बदन पे पड़ी है, बदन ऐसी हालत में था कि इमाम सज्जाद की रूह परवाज करती। बीबी जैनब ने अपने आप को नीचे गिरा दिया और अपने भाई के बदन को साल में देखा और कहा कि महरल खाक जो है वो बदन को छूती हुई जा रही है, खून में गलतीता है, ये हुसैन है। और हज़रत आरा ने मोहतरम उलमा बयान करते हैं कि बीबी ने यकीनन उस मकाम पे बोसा दिया होगा जहाँ नाना ने नहीं दिया ना जामा ने। कौन सी जगह वो कटी हुई रगे हैं कि जिस पर बीबी जैनब ने बोसे दिए होंगे। इमाम दवात आपने अपने बाबा को गुस्ल कफन दिया और आपने दफना दिया, लेकिन 3 दिन तक आपके जद का बदन करबला की सरजमीन पर पड़ा रहा। बस आखिरी जुमले और आपसे इल्तमा से दुआ, 13 मुहर्रम को इजाज़े इमामत से इमाम सज्जाद तशरीफ़ लाए, बनी असद के कबीलों के साथ एक एक करके बदनों को दफनाना शुरू किया। एक बदन पे पहुँचे, कहा बनी असद से कि अब हट जाओ, मैं खुद इनको दफनाऊंगा। अज़ादारा ने मोहतरम किसका बदन है? वो किसी और का नहीं, वो बाबा का बदन है। मेरा मौला अकेला तनहा, यकीनन हाथों में रस्सियां हैं, कहीं हथकड़ियां हैं, तौक बंधी हुई है। मक्तल कहता है कि इमाम ने अपने बाबा के बदन को उठाया नहीं है, अपने बाबा के बदन को समेटा है और उसको उस सरजमीन करबला में रखा। असदारा ने मोहतरम, जब कोई मुसलमान दुनिया से जाता है तो कब्र में उसके सर को किबला रुख किया जाता है। ये मेरा गरीब इमाम खड़ा होकर देख रहा है कि अपने बाबा के सर को कहाँ करे, सर तो मौजूद नहीं है। कटी हुई रगों को रुख किबला किया और कहते हैं कि मट्टी से कब्र को ख़त्म किया और यही लिखा कि ये कब्र जो है वो हुसैन इब्ने अली की है जिसे तशना मारा गया है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमुल ज़ालिमीन वसायालमुल लज़ीन ज़लमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। हाज़रीन मजलिस की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। परवरदिगार हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, मरने से पहले हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। हमारे इमाम को हमारे आमाल से राज़ी फरमा। हाज़रीन की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। बे औलादों को औलाद साले और नेक अता फरमा। बीमारों को बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामला अता फरमा। परवरदिगार जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। मुसलमानों को आपस में मोहब्बत इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। शियान हैदर कर्रार की हिफाजत फरमा। हज उमरा और ज़ियारात की तौफीक अता फरमा। इस कम्युनिटी को आपस में मोहब्बत और इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद्दुनिया व शफ़ातहु फ़िल आख़िरा। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले।

0: अशाम।
1: हाँ ददारो, ये वही शाम शहर है जहाँ 1400 बरस पहले मोहम्मद की बेटी जब किसी मुसलमान बस्ती के आगे से गुजरती थी तो आवाज देती थी, मुसलमानों मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुसलमानों मैं फातिमा जहरा की लख्त जिगर हूँ, मुसलमानों मैं अली मुर्तजा की बेटी हूँ। बस अली का नाम आता था और पत्थरों की बारिश होती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई खोलता हुआ पानी फेंकता था, कहीं से अंगारे गिरते थे। मौला सज्जाद रिवायत फरमाते हैं, शाम शहर में मेरा उजड़ा हुआ काफिला रुका, एक बाग में एक दरख्त के साथ मेरी जख्मी फूफी अपना सर रख के बैठ गई, मेरी फूफी को घसा गया, इस मलून हारिस बिन नौफल की नजर पड़ी, इसने अपने सामान से ताजियाना निकाला, लोहे का बना हुआ ताजियाना था, जगह जगह खारदार तारे लगी हुई थी, ये सालिम अपने घोड़े पे सवार हुआ, इसने घोड़े को एड़ लगाई, ये उस जगह आया जहाँ मेरी जख्मी फूफी बैठी थी,

में लिमिटेड कर देते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मेरे लिए मुश्किल होता है ना, ऑल द स्कॉलर्स आर देयर इन दिस फ्राइडे प्रेयर्स, स्कॉलर्स फ्रॉम होम, स्कॉलर्स फ्रॉम नजफ, बड़ा डिफिकल्ट होता है बात करना, इसलिए मेरे होठ सूख रहे हैं। इंशाल्लाह वो इस्लाह फरमाएंगे, दे आर लिसनिंग टू मी, इंशाल्लाह दे विल करेक्ट माई मिस्टेक्स। उलमाए कराम की सलामती के लिए और उलमाए कराम की तंदरुस्ती के लिए और उनके तौफीकात में इजाफा के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद व आली मोहम्मद। सम स्कॉलर्स आर देयर फ्रॉम कौम, दे आर हैविंग देयर ओन जॉब टू डू, मैरिज सेमिनार्स में शरीक होंगे इंशाल्लाह, पोस्ट मैरिज सेमिनार, प्री मैरिज सेमिनार, टू डेज और थ्री डेज के सेमिनार्स हैं। लॉट ऑफ वर्क्स आर दे आर हैविंग इन दिस सिटी इंशाल्लाह। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मोमिनीन एंड मोमिनात टू अटेंड दिस सेमिनार्स टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ग्रेट स्कॉलर्स। एंड सम स्कॉलर्स आर फ्रॉम नजफुल अशरफ, दे आर ऑल्सो केम हियर टू पार्टिसिपेट इन द मुबल्लिगीन कैपेसिटी बिल्डिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय बिलाल मिशन, समाहा सैयद मोहम्मद हबलुल मतीन एंड सैयद खुतुब अल हुसैनी। वी वेलकम यू बोथ ऑफ यू टू द दारुस्सलाम इंशाल्लाह। आवर प्रेयर्स आर विथ यू, आवर दुआस आर विथ यू इंशाल्लाह। आवर पीपल मे बी बेनिफिटेड फ्राम योर नॉलेज एंड योर तक्वा इंशाल्लाह। तौफीकात के लिए और सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। जी हम कहाँ थे जी, यस्सिर ली अमरी, अए परवरदिगार मेरे काम, अल्लाह का काम क्या है। समटाइम्स वी लिमिटेड द इबादत इनटू नमाज, रोज़ा एंड सदका, सम अदर थिंग्स। हज़रत मूसा से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरा काम क्यों नहीं करते, तो हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगार मैं तो तेरा ही काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, सदका देता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये सारे काम तुम्हारे अपने हैं, अपने हैं, अपने लिए करते हो, नमाज पढ़ते हो जन्नत में जाने के लिए, रोज़ा रखते हो जहन्नम से बचने के लिए, सदका देते हो बलाओं से बचने के लिए, मेरे लिए क्या करते हो। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा ने पूछा परवरदिगार इतना तो बता दे तेरे लिए क्या करूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हज़रत मूसा को, क्या कभी तुमने किसी बीमार की आयादत की है, क्या कभी तुमने किसी मिस्कीन की मदद की है, क्या तुमने कभी यतीम के सर पे हाथ फेरा है, ये मेरे काम है। अल्लाह अकबर। किस तरह हज़रत मूसा ने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने, अलग रिवायत में है, अल्लाह तबारक ने एक्सप्लेन के काम अल्लाह के कौन से होते हैं, काम अल्लाह के कौन से होते, इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक लीडर के लिए अल्लाह के काम क्या हैं, अल्लाह के काम क्या है, वो काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि कम्युनिटी में मौजूद फ़ुकरा, मसाकीन, ऐताम, बेवाएँ मायूसी का शिकार ना हो, डिस्पर के शिकार ना हो, उनके एक इत्मीनान हो कि हमारी खिदमत की जाएगी, हमारे वेलफेयर और एजुकेशन का काम किया जाएगा। एक वो काम अल्लाह तबारक व ताला का, या ये कि लो अल्लाह के काम को अपना काम समझे, और दूसरा जो जुमला इस आयत करीमा है में है कि लोगों के पेन और दर्द को अपना पेन और दर्द समझे। अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम, यानी क्या, लोगों की तकलीफ, लोगों का पेन, लोगों की डिविएशन, लोगों का गुमराह होना पैगंबर इस्लाम को इतना परेशान करता था कि वो रात भर सो नहीं पाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हो गया है मेरे रसूल, लअल्लाका बाक़िउन नफ्सक, तुम तो हलाक करने वाले हो अपने आप को, इतना क्यों सोच रहे हो लोगों के बारे में। रसूल हैं, जिम्मेदार हैं तो वो सोचेंगे, रसूल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो सोचेंगे, ख्याल करेंगे उन लोगों का जो लोग डिविएट होते जा रहे हैं। आपकी पेशानी पर लोगों ने पत्थर मारे, आपके जिस्म को खूनीन बना दिया, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनकी बद्दुआ भी दुआ थी। कभी कभार दर्द होता है तो इंसान हाथ उठाता है अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह, अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाता है। बद्दुआ यानी क्या, नफरीन करना, कर्ज करना, कौम को तबाह कर दे। हज़रत नूह ने कर्ज किया कौम को जी, हज़रत लूत ने किया है, और अधिकार अज़ाब नाज़िल हो, ये लोग सुधरने वाले नहीं। लहू लहान है हमारा रसूल, क्यों, हमारा रसूल रहमतुन लिल आलमीन है, क्यों, रहमत का मदहर है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह तबारक व तआला है, इसलिए कि आपने पत्थर खाने के बाद अपने हाथों को बुलंद किया, अल्लाहुम्मा एह

ऐसा खाना बना लिया, लेकिन वो जो बहरहाल एक कैफियत होती है कि मोमिनीन आपस में मिलते हैं और मिलकर अज़ादारी करते हैं, ये बहुत थोड़े जगहों पर ये मुमकिन हो सका। और इस चीज़ ने और एहसास पैदा किया कि ये कितनी बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से कि अगर हम इसको सही तरह अंजाम न दें तो इंसान की कैफियत क्या हो जाती है। इसी से ये समझ में आता है कि आज़ादारी जो है वो हयात है हमारे अपने लिए। ख़ुद हम जब ज़िंदा रहना चाहते हैं और अगर ये खुदा न खास्ता छिन जाए या कम हो जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो आज़ादारी है ये हमें उस मकसद की तरफ लेके जाती है जिसके लिए हम लोग खल्क किए गए हैं। ये बहुत बड़ा मकसद है। अगर हम इसको सही ना अंजाम दें तो ये हमारी गलतियाँ, आज़ादारी इसमें वो नहीं है कि आज़ादारी के अंदर मसला है या ना, हम सही अंजाम ना दें। अगर हमने इसे सही तरह नहीं किया, क्यों देखें आज़ादारी इम्पोर्टेंट है, किसने क्यों की, हर इमाम ने आज़ादारी को कायम किया है। जहाँ से शुरू हुआ करबला के बाद का ये सिलसिला, हर इमाम मासूम ने इसको बाकायदा बरपा किया। क्यों बरपा किया? ताकि जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए थे करबला, वो मकसद ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो मकसद ज़िंदा रहे। जब वो मकसद ज़िंदा रहेगा तो हमारी ज़िंदगियाँ भी उसी मकसद के तहत गुजरेंगी, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुहिम है। तो बहरहाल इसके बहुत सारे मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं, जिस पे माशाल्लाह गुफ्तगू होती रहती है, होती रही है, कई हज़ार साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और आज़ादारी जो है वो कायम है। और आप देखें कि कलम भी नहीं थकते, ज़बानें भी नहीं थकती, ना नुआख़ान थकता है, ना सलाम पढ़ने वाला थकता है, ना मरसिया पढ़ने वाला थकता है, और हर दफ़ा ये बढ़ती रहती है। तो इसमें जो रूह है, जो असल इसका स्पिरिट है, वो मेरे और आपकी मेहनत नहीं है। वो मेहनत या वो जो असर है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने सजदे का है। हमारा उसमें कमाल नहीं है। आप बोले जी मैं बड़ी मजलिस में पढ़ता हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ता हूँ मजलिस? कौन पढ़वाता है मजलिस? कौन ये ताकत दिलवाता है? कौन बिठाता है? कौन बुलवाता है? कौन रुलवाता है? असल क्या रोना आसान है? कोई इंसान का अपना कोई मर जाए कितने दिन रोता है आदमी? कब तक रोएगा? लेकिन यहाँ जब आप फर्शे अज़ाब में बैठते हैं, यहाँ पर इमाम का नाम आता है या कोई मरसिया का कोई एक शेर, आपको ऐसा लगता है आपकी आँखें नम हो जाती हैं। तो पहली चीज़ जो कमाल की है वो इस आज़ादारी में, वो बुका है, वो गिरिया है। और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहरहाल एक रवायत से इमाम की शहादत भी गुजरी 29 को। इमाम ने खुद शबीब, जब ने शबीब को ये जब रवायत है, काफ़ी लंबी रवायत है, इमाम ने जो पहली चीज़ कही, और ख़ुद इमाम का जो अपना हुलिया होता था मुहर्रम के चांद के बाद, के काला जो है वो लिबास हो जाता था और इमाम के चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती थी, और उन्होंने जब ये बयान किया कि पहली चीज़ यही कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, कि हमारे जद पर गिरिया करो, बुका करो। क्यों कहा? फरमाते हैं कि ये जो गिरिया है, ये जो बुका है, ये तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब ये बहरहाल जब रिवायतें इस तरह पढ़ी जाती हैं तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मौलाना क्या मतलब, आदमी गलत काम करता रहे तो फिर गिरिया करता रहे? तो भाई गलत काम तो कोई कहता तो कोई नहीं किसी को गलत काम करो, हम तो अच्छे काम की दावत दे सकते हैं। अब वो गलत काम उसका अपना फेल है, लेकिन हम तो उसको ये कह सकते हैं ना कि भाई एक काम ऐसा है जो तुम करोगे तो तुम्हारे गलत काम ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग इस तरह जाविये से नहीं सोचते हैं। जब हम ये बयान करते हैं कि फ़लाना अमल करो गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मौलाना साहब रिलैक्स मोड दे रहे हैं, आप पब्लिक गुनाह करती रहे, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है। खुदा भी जानता है और आइमा अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि इंसान ख़ताकार है, इंसान से गलती सरजद होती है, इंसान जो है वो बहरहाल इंसान है, दुनिया की तरफ तमायल अख्तियार कर जाता है। कोई उसको ऐसा जगह ऐसा दर तो दो कि जिस पे ये आए, और जब ये आए तो इसके गुनाहों को बोलो कि भाई यहाँ आओ माफ़ हो जाएंगे। आए तो सही है, इसको आने तो दो, आएगा। अब जब जाएगा तो इमाम हुसैन जाने और शख्स जाने, और हम क्यों किसी पर इतनी स्लेब लगा देते हैं कि भाई ये तो गलतियाँ करता है, हमें क्या पता मरने से पहले तौबा करके मर के चला जाए। भाई मेरा दरवाज़ा आपका दरवाज़ा थोड़ी है, ये तो अहले बैत का दरवाज़ा है। वो तो उन्होंने तो अपने दुश्मनों को भी बोला कि आ जाओ,
उन्होंने

कभी किसी लिए हम खाम खा बंद कर देते हैं। तो अजदाने और इसका मतलब ये नहीं है जब ऐसी रिवायात बयान की जाए कि वह सब ज्यारत पे जाओ तो गुनाह माफ हो जाएंगे, गिरिया करो तो गुनाह माफ, का मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं गुनाह करो, ये हम खुद बनाते हैं। सेकंड जो जुमला है ये हमारा अपना क्रिएट हुआ है, कोई भी नहीं कहते, नहीं रिवायत कहती ना शख्स। ये तो ये है कि तुम जब गिरिया करोगे तो तुम ऐसे गुनाह तुम्हारे माफ हो जाए जैसे तुमने कभी कोई गलती की ही नहीं थी, यानी तुम्हें एक ऑप्शन दिया है, तुम्हें एक जगह दी है। अब जब तुम यहां से जाओगे तो खुद शर्मिंदा होगे कि मैं इमाम हुसैन पे गिरिया करके आया हूं, मेरी आंखों ने आंसू बहाए हैं, क्या ये मेरी आंखें गुनाह करेंगी, क्या मेरे ये लब गलती से किसी की गिबत करेंगे, क्या ये मेरे कान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के आए हैं क्या ये गुनाह करेंगे। तो ये खुद ब खुद उसके वजूद के अंदर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं। ज़ाने मोहतरम, हम समझते हैं कि शायद ये चीज़ें असर नहीं करती, ये असर करती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं और इंसान को उस नहज पे ले आती हैं कि जहाँ मतलूब और रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता कि दरवाज़ा इतना ओपन या खुला हुआ नहीं होता तो हुर अलैहिस्सलाम नहीं बनते, वो जो जिन्होंने खुद रोका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, सारी चीज़ें की, मगर उसके बावजूद भी तौफीक हो गई खुदा की तरफ से कि दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, तो ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तो अज़ादारी जो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहें, और ये रबीउल अव्वल तक जो हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब अज़ादारी ख़त्म हो गई तो हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि ये जो चंद दिन थे ये तो हमारे इसलिए थे कि हम अपने ताल्लुक को मजबूत करें अगर कमज़ोर हो गया है पूरे साल, और फिर इसी रिलेशन के साथ हमने पूरा साल सफ़र करना है, ट्रेवल करना है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मुहर्रम ख़त्म हो गया तो खुदा ना खास्ता हमने गलत काम करने हैं, नहीं, असल ये था कि हम वादी करबला में आएँ, उस वादी के अंदर, और जब इस वादी में आएँ जिसमें इमाम बुला रहे हैं तो अब इमाम के साथ रहना है, इमाम को छोड़ना नहीं है। इमाम सिर्फ मस्जिद या इमाम बारगाह में नहीं होंगे जहाँ मजलिस होती है, नहीं, इमाम आपको जो बार बार बुला रहे हैं मजलिसों में, बार बार तौफीक होती है, ये होती है कि जब तुम इमाम के पास आ गए तो अब तुम अपनी ज़िंदगी के हर काम में हो, घर में हो, कारोबार में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सड़क पे हो, कहीं पे भी हो, अपनी तन्हाई में हो, हुजूम में हो, तुम इमाम के साथ हो। क्यों? क्योंकि तुम इमाम के साथ होने के लिए आए थे। क्यों हम मकसद की तरफ हैं, क्यों हम अदादारी में जो है वो इमाम को याद करते हैं, क्यों हम असाब का जिक्र करते हैं, क्यों? इसी रिवायत में आगे इमाम फरमाते हैं कि जब तुम गिरिया करते हो तो ये तुम्हें पाक करता है, ये तुम्हें ताहिर करता है, जब तुम तहारत की मंजिल पे आते हो तो फिर अगला काम शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इमाम जानते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास नजासत इनके पास नहीं आ सकती है, तो कुरान कह रहा है क्यों कि इनके करीब कोई भी नजिस चीज नहीं आ सकती है। हम खुदा ना खास्ता इंसान के अफकार गलत हो, गलती हो तो बुका करके जो तहारत हासिल होती है ये तहारत अब आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। अब तुम ताहिर हो गए तो इमाम फरमाते हैं अपने शबीब को, शबीब अब जब भी याद करो करबला को और करबला वालों को तो क्या कहो, या लैतनी कुंतु माअकुम, काश हम आपके साथ होते तो एक अजीम कामयाबी में कामयाब हो चुके होते। और कहा जब भी याद करो करबला वालों को, ये तो ये कहो, क्यों कहो, ताकि तुम आमादा हो, रेडी हो कि तुमने इनके साथ जाना है, तुमने इनके साथ होना है। अगर इंसान इनके साथ ना हो पाए तो फिर सारी जिंदगी इंसान क्यों करबला का जिक्र करता है, क्यों कहता है कि हम भी होते, क्यों उनका जिक्र करता है जो नहीं आए, क्यों कूफा का जिक्र करता है, क्यों सामने वाले लश्कर की खसूसियतें, रज़ाइल, उनकी जो बुराइयाँ थी क्यों बयान करता है उनके अंदर जो प्रॉब्लम, क्यों? ताकि कहीं खुदा ना खास्ता हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा ना हों और हम अपने इमाम के साथ ना हो पाए। या अय्युल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो, ये कुरान की सूरह तौबा की आयत ईमान वालों से मुखातिब है, दूसरों से मुखातिब नहीं है। जो ईमान लेकर आए हैं अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी परहेजगार बनो और फिर कूनू मास सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो साथ होना है, सादिकीन कौन है? बहरहाल जब आयत जो है वो ये नाजिल होती है, बहरहाल ये आइमा अलैहिस्सलाम के लिए, अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए असल सादिकीन यही है। लेकिन अब इनका साथ कैसे दे कि जब हमारी जिंदगी जो है वो इनसे दूर हो,

जिंदगी दूर होने का मतलब क्या, यानी जो हम अमल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में वो कर रहे हैं जो ये चाहते ही नहीं है, जो इनको पसंद नहीं है, तो फिर हम कैसे इनके साथ देंगे। दोबारा ये चंद दिन में आपको थोड़ी, आपने इतने दिन माशाल्लाह मजलिस से सुनी, तो मेरा तो काम ही थोड़ी बहुत स्ट्रेस देना होता है वैसे भी, तो मैंने कहा चंद दिन ये थोड़ी सी स्ट्रेस दें कि हम इतने दिन जो सुना है क्या हम वाकई साथ हो पाए या नहीं हो पाए। ये साथ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पहुंच पाए इमाम तक तो फिर ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता सब जाया हो गया, किसी ने तो मेहनत की लेकिन शायद मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं जो पहली मुहर्रम से पहले था, पहली मुहर्रम के बाद 2 महीने 8 दिन गुजर गए, मैं वहीं खड़ा हुआ हूं, मैं आया ही नहीं वादी के अंदर। ये वादी तकाजा करती है, ये वादी मुझसे कुछ मांगती है, क्या मैं अपनी जिंदगी के हर जाविये में इस काबिल बन पाया कि मैं इमाम तक पहुंचूं या ना पहुंचूं। अजाने वो तुम सारा मसला इमाम तक पहुंचने का है, करबला सब मसला यही है कि क्यों थोड़े से लोग आए बाकी क्यों नहीं आए, नहीं पहुंच पाए इमाम तक। इमाम तक पहुंचना आसान नहीं है, इमाम तक पहुंचने के लिए अपने आप से हिजरत करनी पड़ती है, अपने वजूद से निकलना पड़ता है इमाम तक पहुंचने के लिए। अगर अपने वजूद में कैद हूं मैं इमाम तक नहीं पहुंच सकता अज़ीज़ाने मोहतरम, फिर मैं इमाम के पास सामने खड़ा होकर भी इमाम से कहूँगा मौला मुझे ज़रूरी काम है, मेरे काम है, मेरी ज़मीन है, मेरी औलाद है, मेरी सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं पहुंच सकता। ये जो हमने अपनी दुनिया इतनी बनाई हुई है खूबसूरत, अपने काम, अपना रोज़गार, अपनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप मेहनत करें, हलाल कमाएँ, अच्छा घर बनाए, सब कुछ दें, लेकिन ये जो इतनी वाबस्तगी है, इतने जो हमने अपने आप को अटैच किया हुआ है, क्या ये सारी स्ट्रिंग्स इस काबिल हैं कि इनको तोड़ेंगे हम जब इमाम बुलाएंगे? क्या हम इतने अपने आप को, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये जो जहन में होता है कि वो आवाज़ आएगी तो हम चले जाएंगे, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, इसे आज से शुरू करना पड़ेगा कि मेरी कौन सी तार, मेरी कौन सी जंजीर इतनी स्ट्रांग है जिसे मैं छोड़ना मुझे मुश्किल है। और हर शख्स की कोई ना कोई एक ऐसी जंजीर है जो उसे मुश्किल में डाले हुए है। बहरहाल हमारे अपनी भी जंजीर है, ऐसा नहीं है कि हम को मेंबर पे बैठे हुए तो हमारी कोई जंजीर नहीं, हमारी अपनी जंजीर है, हमारी अपनी मुश्किलात हैं, हम अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, आयतुल्लाहों से जाके पूछते हैं भाई इसको कैसे ख़त्म करें, ये मुश्किल में है, इतने साल हो गए हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस तरह हमसे जब लोग रुजू करते हैं, हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना सब कुछ सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाती है, यहाँ गिर जाते हैं। तो हर शख्स किसी एक चीज़ में पकड़ा हुआ, अब इसको कौन बताएगा आपको? ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर की हैं, ये आप सिटी स्कैन करा लें, आपको कमर का दर्द, डिस्क की प्रॉब्लम, जहन की प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता कोई और मुश्किल हो तो सिटी स्कैन आपको बता देगा, सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन बहरहाल ये PCR टेस्ट आपको वायरस बता देगा आपको कोरोना है कि नहीं है, लेकिन ये जो कल्ब के अंदर वायरस है ना, इसे दुनिया की कोई चीज़ आपको बता नहीं सकती सिवाय उनके जिन्हें खुदा ने भेजा ही इंसान के हिदायत के लिए। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिस्सलाम सब जानते थे कि दुनिया तरक्की भी कैसे करेगी, सब करेगी, लेकिन ये इंसान नहीं बन पाएगा जब तक ये इस रास्ते पे नहीं आएगा। इसीलिए ये दरवाज़ा इन्होंने अपना खोल के रखा कि ये दरवाज़ा बंद नहीं है, खुला हुआ है, लेकिन अपने साथ सच्चे हो जाओ, कम से कम अपने आप को धोखा ना दो। दूसरे के सामने हम बहुत अच्छे हैं, शक्ल अच्छी, परफ्यूम अच्छी, खुशबू अच्छी, कपड़े अच्छे लगाकर मुस्कुरा के मिलना, चाहे अंदर कुछ भी हो आप अच्छा है, ठीक है, सामने वाले हुस्न ज़न रखें, सामने वाले को भी आपके लिए हुस्न ज़न रखना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा ही है, अच्छा मिल रहा है तो अच्छा ही होगा। अब अंदर जो मुश्किल है वो हम, मैं आपसे छुपा सकता हूँ लेकिन मैं खुदा से छुपा सकता हूँ, मैं आइम्मा अलैहिस्सलाम से छुपा सकता हूँ? नहीं छुपा सकता। कुरान की आयतें वाजे बयान कर रही हैं, सूरह तौबा ही की आयत है कि ए रसूल इनसे कह दो ये अमल किए चले जाएं, अल्लाह रसूल मोमिनीन की जमात देख रही है, देख रही है, मुसलसल देख रही है। ऐसा नहीं है कि अभी आप करेंगे तो देखेंगे, नहीं, ये तुम्हारी नीयतों से वाकिफ है, तुम्हारे अंदर क्या है ये जानते हैं। तभी खुदा ने कहा ना कि बुरा सोचो और अमल ना करो,

तो मैं अजाब नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा सोचो और अमल ना करो, मैं सवाब दूंगा। कैसे देख रहे हो? क्यों अंदर देख रहे हैं? कितने लोग आइम्मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते थे और आकर बयान करते थे, मगर इमाम अंदर की हालत से वाकिफ होते थे। और बाज़ औक़ात तो आने वाला जब आता था तो कुछ कहता भी नहीं था और इमाम उसे बता देते थे उसका मसला क्या है, चला जाते थे। क्यों? जानते थे, अंदर से जानते थे कितना। यानी असल में हम, मैं अपनी बात खुदा ना खास्ता आपको नहीं कह रहा, हम इन हस्तियों को पहचान नहीं पाए। और यकीनन जा रहा है हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत इसलिए होनी चाहिए कि हम इनको पहचाने। जितना हम पहचानेंगे अज़ान मोहतरम, ये जो बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि जी फलाने का तकवा बड़ा ज़्यादा है या ईमान ज़्यादा है, हमें क्या पता कैसे ज़्यादा है? हमें तो नहीं पता। बहरहाल हम तो ज़ाहिर पर देख के उसने ज़न रखते हैं, लेकिन मयार क्या है कि शख्स का ईमान ज़्यादा हो? क्या है, कौन सा ऐसा कैलकुलेशन है, कौन सा ऐसा कोई तराजू है, डिजिटल तराजू है, क्या है कि पता चले कि जी इसका ईमान ज़्यादा है या इसका तकवा परहेजगारी ज़्यादा है? ज़ाहिर है हम तो नहीं कर सकते, लेकिन फार्मूला दिया है उन्होंने। फार्मूला क्या है? फार्मूला यही है कि जो जितना इमाम के साथ होगा उतना उसका ईमान ज़्यादा होगा, जो जितना इमाम के करीब होगा उतना वो परहेजगार होगा। मतलब आप खुद तसव्वुर करें, जो अब इमाम के साथ होना फिजिकल नहीं है सिर्फ, हाँ इमाम, अब मतलब आप कहें कि भाई हमारे यहाँ तो इमाम अभी जाहिर में नहीं है तो हम इमाम के साथ कैसे हों? नहीं, इमाम के साथ होना यानी वाकयन अपने वजूद को इमाम के वजूद के साथ रखना और इस हालत में ज़िंदगी गुजारना कि इमाम देख रहे हैं क्या मेरी ज़िंदगी इमाम की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अबू बसीर जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम का सहाबी है, कूफा में रहता है, इमाम मदीना में रहते हैं, इसका एक हमसाया था और वो दुनिया परस्त था, दुनिया के लोगों के माल खा लेना, गज़ब और इस तरह की महफिलें करना, ये हमसाया था, नेबर था, पड़ोसी था, तज़क्कुर देना ज़ाहिर है हमसाये का फ़र्ज है जाके कि भाई ये तुम ज़िंदगी जो गुजार रहे हो ये सही ज़िंदगी नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल वो भी हमसाया होने की वजह से ख्याल करता था, कुछ कहता नहीं था। एक दिन जैसे घर से कोई गाने और इस तरह की आवाज़ें थीं तो उन्होंने बोला कि ये मुनासिब नहीं है ये, तो उन्होंने कहा देखो मेरा मसला ये है कि तुम किसी और दुनिया के इंसान हो, मैं इस दुनिया का इंसान हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पे ये छोड़ सकता हूँ। मानता नहीं था उस तरह जिस तरह अबू बसीर इमाम मानता था। कहा ये जिसको तुम मौला कहते हो ना, अगर वो मेरी जन्नत की ज़मानत दे दे तो मैं ये छोड़ दूंगा। इमाम का उस तरह मानने वाला नहीं था, मगर इतना जानता था कि ये हस्तियां हैं इस मकाम पे। अबू बसीर जब आए मक्का मदीना ज़ियारतों में गए, आए और इमाम की खिदमत में पहुंचे, इमाम को कहा कि मेरा हमसाया है ऐसे। इमाम ने कहा उसको बोलो कि हम तुम्हारी जन्नत की ज़मानत दे देंगे मगर एक शर्त पे कि बहरहाल जो लोगों का माल खाया उसको लौटा दो और ये सब ज़िंदगी जो है इसको सबको तर्क कर दो, छोड़ दो, हम ज़मानत दे देंगे। ये वापस गया, लोग मिलने आए इससे, ज़ियारत पे आया था, वो भी आया, उठने लगा, उसने बोला रुक जाओ मुझे तुमसे काम है। जब सब चले गए तो उसे कहा कि इमाम ने तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है। पहले तो खुद ही अजीब सा होगा कि इमाम ने मेरे लिए पैगाम भिजवाया है, कह रहा इमाम ने तुम्हारे लिए पैगाम। इमाम ने कहा कि जो तुमने लोगों का हक़ लिया है वापस करो और ये ज़िंदगी जो गुज़ारा इस तरह छोड़ दो, हम तुम्हारी ज़मानत देते हैं। चला गया ये, थोड़े दिनों बाद इसने फिर पैगाम भेजा कि मेरे घर तशरीफ़ लाए। ये गया तो देखा ये दीवार के पीछे सामने नहीं आ रहा। कहा क्या है? कहा अबू बसीर मेरे पास जितना लोगों का माल था मैंने सब वापस कर दिया और जिसका मुझे पता नहीं था उनका मैंने सदका दे दिया, अब मेरे बदन पर कपड़ा भी नहीं है, यानी मैंने अपने आप को खाली कर दिया, कुछ नहीं है मेरे पास, ना कोई बर्तन है खाने के लिए, कुछ नहीं लिबास पे। तो अबू बसीर ने कुछ लोगों को बोलकर इसको लिबास पहुंचवाया, चीज़ें दी, कुछ दिन और गुजरे, उसने फिर पैगाम भिजवाया। ये गया तो देखा मरीज है, बिस्तर पर लेटा हुआ है और आखिरी ऐसे इंसान के अय्याम होते हैं, होश में आता है थोड़ी देर, फिर बेहोश हो जाता है।

एक हफ्ते की, एक एक हफ्ते में इमाम देखते हैं हमें, कहते होंगे कि ये पूरे हफ्ते इसने मेरे लिए क्या किया। तो मैं खुद जानता हूं, कोई भी आपको और मुझे बता नहीं सकता कि इसने क्या किया, खुद मुझे पता है मैंने क्या किया। कितना मैं इमाम से दूर हुआ इस हफ्ते के अंदर और कितना मैं इमाम के करीब हुआ। अजीजाने मोहतर, दूर कैसे होऊंगा? हर वो काम कि जो इन्होंने मना किया, अगर मैंने किया मैं दूर हो गया। और जरा सा फासला वक्त के साथ साथ इमाम से दूर कर देता है, जरा सा फासला। यही वजह है कि इतना आसान नहीं था, थोड़े से थे। तारीख में उंगली उठाएं, थोड़े थोड़े हैं बस, ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह क्या है? ज़रा सी दूरी इनसे दूर कर देती है। चॉइस हमारी अपनी है। करबला कुर्बानी मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है, कुछ तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा भाई। अगर बदन नहीं दे सकते, गर्दन नहीं कटवा सकते, ख्वाहिशात तो मारे अपनी कम से कम, अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, कोई बात ऐसी ना निकले जिससे किसी का दिल टूटे, किसी की गीबत हो, किसी की तोहमत हो, किसी का क्यों हकूक नास को अपनी रूह के ऊपर डाल रहे हैं कि उठ ही नहीं पाए। क्यों इंसान ऐसी गलती करे कि जिससे उसकी कब्र भारी हो जाए? क्यों इंसान ऐसा कोई अमल करे जिसकी वजह से उसका बदन इतना भारी हो कि फजर की नमाज में ना उठ पाए आदमी? क्यों ऐसी बात करे कि जिससे खुदा का निजाम हर वक्त चेक कर रहा है और सब चेक करता है? बच्चे बैठे में बात खुश ना हो, बच्चे आप गेम खेलते रहते हैं हर वक्त, सब खुदा देख रहा है ये कौन कितना गेम खेलता है, कौन कितना कुरान पढ़ता है, कौन माँ बाप की कितनी बात सुनता है, सब खुदा देख रहा है। दो घंटे बैठा हुआ इसने जो है वो गेम खेला, क्या किया इसने? कुरान बार बार कह रहा है मैंने लहो लाभ के लिए तुम्हें थोड़ी पैदा किया था, तुम ये गेम खेल रहे हो बैठे पे, तुम इमाम के लिए तैयार हो, तुम गेम खेलने की बजाय गेम बनाने वाले बनो, कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, कोई एप्लीकेशन बनाओ, सोर्स कोडिंग करो इमाम के लिए बैठ के। मगर करबला में 12 साल के बच्चे नहीं थे, मगर करबला में जवान नहीं थे, कौन सिखाएगा बच्चों को? हम तो खुद पकड़ा देते हैं, जाओ जाओ खेलो जाके। खुद हमारी अपनी गलती है जाने, तो फिर हम कहते हैं मौलाना औलाद बिगड़ गई है, खराब हो गई है। कैसे खराब हो? खुद तो आपने खराब किया। आप उससे बात करें, डायलॉग दें उससे, गुफ्तगू करें उसे, फिजिकल चीजों में इन्वॉल्व करें उसको। अज़ीज़ाने मोहतरम, कैसे इमाम का साथ देंगे आप? फिर क्या मेरा मोबाइल इस काबिल है कि मैं इमाम ज़माना को दे दूं यूं करके, ये ले मौला ये मेरा मोबाइल है? कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपको नापसंद होगी, ये ले। यहां तो बीवी से इंसान लॉक, छह छह लॉक लगा के रखता है, तो इमाम को क्या देगा मोबाइल? हाँ तो ये प्रैक्टिकल है। अगर कोई गलत चीज आ भी गई तो आप क्या उसको रखते हैं या डिलीट कर देंगे? नहीं, जब आज एक मोबाइल नहीं दे सकते इमाम को, तो कल अपनी हयात कैसे देंगे इमाम को, कैसे देंगे? और यहां ये बच्चे बरहल बैठे हुए तो जाके ब्राउजर में चीजों को डिलीट कर दें, माँ बाप को ना पता चले क्या देखा, हिस्ट्री डिलीट कर दें। ये सारे एप्लीकेशन भी बहुत समझदार हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं, डिलीट कर दो, प्राइवेसी ऑन कर दो, ये कर दो। हम माँ बाप से छुपा सकते हैं, दोस्तों से छुपा सकते हैं डिलीट की हुई चीज़ें, मगर उनसे नहीं छुपा सकते डिलीट की हुई चीज़ें। यहाँ है, है। और जो इंसान अमल करता है उन दो कातबीन के अलावा, वो जो दाएं और बाएं कातबीन है ना, जो लिख रहे हैं मेरे अमल को, अच्छे को बुरे को, और एक पूरी फाइल बन रही है, फाइल रोज़े क़यामत में जो हाथ में दी जाएगी, वो अलग है। और ये जो हम अमल करते हैं, एक हमारे वजूद पे लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और ये जो लिखा जा रहा है, ये इतनी उलझी हुई किताब है कि जिसके असरात फौरन ज़िंदगी पे मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। जो गलत करते हैं वजूद पे लिखा जा रहा है, और खुदा ना खास्ता उसी हालत में इंसान मर जाए, किसी गलती की हालत में उसी हालत में उठाया जाएगा आलम बरज़ख, उसी की निशानदेही है। जो हम अमल करते हैं, गलत किया, बुरा किया, खुदा ना खास्ता, फौरन अगर इंसान मर गया, उसी हालत में इंसान उठाया जाएगा कब्र से। और कब्र के अंदर भी वही हालत है। कब्र के लिए क्या कहा है? दो ऑप्शन है कब्र, या तो जन्नत की खिड़कियों में से, बाग में से एक बाग है छोटा सा, या फिर खुदा ना खास्ता जहन्नुम की खिड़की जो है वो कब्र में। तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई। अब वहां तक जाने के

नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय उनके। क्या करें जाने मात्र, जिंदगी थोड़ी सी है, जिंदगी का पता थोड़ी है, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कितने साल जिंदा रहूंगा, कितने घंटे जिंदा, अभी उठा ख़त्म। अभी किसी जवान का आज बता रहे थे कि फजल भाई के ऑफिस में इंतकाल हो गया हार्ट अटैक का, पता है जिंदगी का पता ही नहीं। जिंदगी वैसी आजकल प्लास्टिक लाइफ है, खाने हमारे जो खाने खाते हैं ऊपर से कोते अलग रहते हैं। ये इंसान आजकल क्यों इतनी उसकी हालत ख़राब है, हसद जलन खाम खा नेगेटिव थिंकिंग जहन में होना, बुरे ख्यालात रखना, पाँव भी स्लिप हो गया फलाने ने जादू कर दिया होगा किसी ने, ये नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है माशरे में यार, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है आदमी, ये हो गया वो हो गया फलाना नहीं होगा, भाई खुद भी करो यार, सारी दुनिया थोड़ी फारिग बैठी हुई है जादू कर रही है बैठी हुई आपके ऊपर यार, खुद भी आप सोचो कि यार मैं कौन सा अच्छा काम कर रहा हूँ मैं जिंदगी के अंदर। नेगेटिव थिंकिंग इंसान के चेहरे को खराब कर देती है, उसके वजूद को, खुश नहीं है आदमी, मुस्कुरा नहीं रहा। भाई शुक्र करें खुदा ने दिन दिया है, खाना दिया खिला दिया, इबादत की तौफीक दी आपको, सजदा दिया आपको, कितनों को सजदा नहीं मिलता डेली, कितना आप सबसे इंसान आप समझ लें जो ज़ईफ़ इंसान है ना, सबसे आप इंसान कह लें कि इसकी किस्मत ही खराब है, वो शख्स है जिसे खुदा का सजदा नसीब नहीं होता। हम समझते हैं कि शायद आज ये इतना पैसा नहीं मिला, ये डील डन नहीं हुई, ये नहीं है जाने मोहतरम, हमें क्या पता इस सजदे का असर कितना है। खुदा तो यही तो कहता है कि ये है मेरी मखलूक, देखो इसको मैंने हर हाल में रखा, मगर ये फिर भी मुझे सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द, और वो क्या सजदा होगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो मगरिब रोजे आशूरा का था। तसव्वुर करें आप कि सब लुटा दिया और उसके बाद भी सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द, दर्क करें उस मकाम तौहीद को। इसीलिए अम्बिया, इसलिए आइम्मा ये आए इसलिए कि तुम खुदा की तरफ आओ, पहचानो, सजदा करो उसको। तुम्हें क्या चाहिए, कितना तुम दुनिया के लिए परेशान हो, दुनिया है ही कितनी तुम्हारे लिए, दुनिया अगर इतनी खूबसूरत और अच्छी होती तो फिर मौला मुत्तकियान क्यों फेंकते इस तरह अपनी नालैन को। जब इब्ने अब्बास जो है वो अरब के रईसों के साथ आए, कहा मौला नालैन सी रहे, मौला ये क्या काम कर रहे हैं आप, रही से कबीला आए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। इमाम ने वही अपनी नालैन मुबारक को कहा कि मेरे नजदीक इस हुकूमत इसके भी बराबर नहीं है, अली के लिए कमाल यही था, अगर अली के लिए हुकूमतें कमाल होती तो फिर अली इस तरह गले में रस्सियां डालकर ना जाता, अली के लिए खुदा की रजा कमाल थी, दीन की बका कमाल थी। अज़ान मोहतरम अय्याम आपके सामने, ये वही अय्याम है रसूल खुदा की वफ़ात के बाद, बहरहाल के इन्हीं अय्याम में जो है वो जुल्म और सितम शुरू हुआ है इस घर के ऊपर। हम बहरहाल अपनी ज़िंदगी में देखें अज़ान मोहतरम, हम तो जुल्म नहीं कर रहे कहीं अहले बैत पर, हम तो नहीं कर रहे, क्या गम था अहले बैत को, यही तो था लोगों ने साथ नहीं दिया, लोग आए नहीं मिलने नहीं आए, लोगों ने लबैक नहीं कहा, ये हम था ना अहले बैत को। अगर खुदा ना खास्ता आज मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं भी लबैक नहीं कर रहा, मैं कैसे पहुँचूँगा इमाम तक। अज़ान इमाम हमारे साथ है, नजफ का रहने वाला था, मरीज था, बहुत ज़्यादा बीमारी थी, सीने की खास बीमारी थी, और इस फ़कीर होने की वजह से, गुरबत की वजह से ज़ाहिर है कोई रिश्ता भी नहीं होता था। सुना था इसने बहरहाल उलमाओं से बुज़ुर्गों से कि 40 जो हैं वो हफ्ते मस्जिद सहला में किए जाएं तो इमाम से मुलाकात हो जाएगी, इमाम से मुलाकात हो तो इमाम को अपना दर्द बयान करूं कि भाई ये मुश्किल है क्या करूं। गुज़र गए 39 जो है वो हफ्ते, मंगल की रात जो होती थी वो गुज़र गई, 40 में पहुँचा खांसी आई, खांसी से खून आया, खून कपड़ों पे लग गया, मस्जिद में दाखिल नहीं हो पाया, नजिस हो गए थे कपड़े। रात का वक्त था, इसने मस्जिद में देखा वैसे अंधेरा है, इसने बोला आज 40वां है अभी तक तो कुछ नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, क्या होगा। तो अपने साथ थोड़ी सी चाय या कहवा लेके गया हुआ था, रात ठंडी थी, वहीं बैठ गया, देखा कोई शख्स चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसने बोला कोई ना कोई

कबीले का होगा, अब मेरे पास तो कहवा भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको कितना पिलाऊंगा। खैर वो आया, उससे पूछा फलाने कबीले के, और फलाने एक एक करके सारे कबीलों को जानता था, तो कहा तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, मतलब कौन किसी भी कबीले का नहीं हो तो कौन हो। आने वाले शख्स ने कहा छोड़ो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, तुम अपनी मुश्किल बताओ, तुम कैसे यहाँ बैठे हुए हो। कहा मैं आपको क्यों बताऊँ आप कौन होते हैं। मगर उस शख्स के रवैये की वजह से इसका दिल नरम हो गया, बैठ गया, बातें करने लग गया। फिर कहा कि चले मेरे साथ मीसा में तम्मार की ज्यारत पे, और फिर हजरत मुस्लिम की ज्यारत पे भी। कहा चलो। चले लगे तो वो जो शख्स था, वो वक्त का इमाम था जिसके लिए इतनी इसने मेहनत की थी, कहा कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा, मगर तुम्हारा फ़क्र ख़त्म नहीं होगा। अब इसने तो पूछा भी नहीं ना, इसने कुछ बताया तो ये समझा नहीं, लेकिन जैसे ही मीसा में तम्मार के रोज़े पर पहुँचे मरकत पे, तो नमाज शुरू की। जब इसने नमाज शुरू की तो इमाम ने भी नमाज, तो नूर निकला बदन से, नूर इतना हो गया। तो जैसे इसने की तो देखा था वो नूर जा चुका था। इसको बड़ा अफसोस हुआ, इसको ये समझा ये इमाम थे, दर्क ही नहीं कर पाया, बड़ा गिरिया किया, इमाम से माजरत की कि मौला मुझसे गलती होगी, मैं आपको पहचाना नहीं और मैं आपसे कैसे गुफ्तगू कर रहा था। फिर कहने लगा आपने कहा था हज़रत मुस्लिम की ज़ियारत पे जाएंगे तो मौला आ जाइए वहाँ तक, तो आ जाइए। कहे जैसे ही मस्जिद कूफा से हज़रत मुस्लिम के अंदर पहुँचा, वो नूर दोबारा आया आया और साथ ज़ियारत करके चला गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हम इमाम से गुफ्तगू नहीं करते, हम इमाम से अपनी मुश्किल बयान नहीं करते, आप खुद अपने दिल पे हाथ रखकर बोले। पूरे हफ्ते कितनी दफा इमाम से गुफ्तगू करते हैं, पूरे हफ्ते खुदा से तो मांगते हैं, दुआ तो खुदा से ही मांगनी है, खुदा से इनका वसीला देके मांगते, दुआ तवस्सुल भी पढ़ते हैं, दुआ कुमैल भी पढ़ते हैं, लेकिन इमाम से गुफ्तगू, मेरी जिंदगी में इमाम से गुफ्तगू कितनी है। या मसलन कभी जिंदगी में ऐसा होता हो कि कोई मुश्किल कोई परेशानी आती हो तो आपके मुंह से निकलता हो या साहिबुज़्ज़मान, कब निकलता है? अगर हमने अपने आप को इस काबिल एडजस्ट नहीं किया हुआ ना, तो जब तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है तो इंसान का जो अंदर होता है ना वो बाहर आता है। बाहर पता इंसान गुस्से में आ जाता है, इंसान बड़ा अंदर से वो हो जाता है, वो कहता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो अपने आप को दुनिया की इस हालतों में हमने अपने आप को एडजस्ट किया कि जब हमें कोई मुश्किल पड़े कोई चीज आए तो सबसे पहले ये निकले या साहिबुज़्ज़मान अदरकनी है। ऐसे मैं अपनी तरबियत खुद कर रहा हूं ऐसी कि मैं अपने इमाम से गुफ्तगू करूं, कौनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान की आयत को नाजिल हुए वे कितना अरसा हो गया, सूरह तौबा कब नाजिल हुई, और सबसे कह रहा है ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों मैं सच्चाई से दूर हो रहा हूँ? इससे जिंदगी का तो कोई पता थोड़ी है कि मैं कल होऊंगा, परसों होऊंगा, मर जाऊंगा, बूढ़ा होऊंगा, हाथ में तस्बीह पकड़ूंगा, नहीं। और सिर्फ साथ होना इसलिए नहीं कि मतलब आप अपने को काम निकलवा लें इमाम के साथ, नहीं, इमाम के काम कौन करेगा? हम तो बाज़ों का आइम्मा की जो बारगाह में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा काम फंसा हुआ है, ठीक है आपका काम कर देते हैं, वो सब कर देते हैं, उनके यहाँ कोई मसला नहीं है, उनके यहाँ सबकी मुश्किल हल हो जाती है। मसला ये है कि हम इमाम की नुसरत कब करेंगे? करबला में जो आए थे वो क्या इमाम से कुछ लेने आए थे या इमाम को देने आए थे? जो था उनके पास वो तो सब छोड़ के आ गए थे, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता तो वो आते क्यों? सईद, सुहैर इब्ने कैन कि जिनके अपने खेमे लगते थे, अपने कारोबार थे, अपने कारवान थे, जब इमाम ने बुलाया सब छोड़ कर आए, और जब आए तो अपना वजूद लेकर। इमाम को पैसे चाहिए थे, मगर इमाम को दौलत चाहिए थी, इमाम को खजाने चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था इमाम को। इमाम तो ज़मीन पर हाथ रखते तो चश्मे निकलना शुरू हो जाने थे, और इमाम को वजूद चाहिए थे, वजूद। चंद वजूदों को जमा किया इमाम ने, और ऐसा करबला में उनको सजाया कि उनकी रोशनी आज तक हमारे दिलों को मुनव्वर कर रही है। यह है इमाम का साथ देने का नतीजा। अज़ीज़ान-ए-मोहतरम, हमारी ज़िंदगी भी बहुत तेज

0: नायला मक्के से वापस आ गई है, तो याद रखना कि बिना किसी रियायत के एक एक का सर कलम कर दूंगा। आज से बिला वजह घर के बाहर जाना मना है, किसी भी अपने या अजनबी से बात करना मना है। आखिरी बार तुम लोगों ने नायला को शहर के दरवाजे के बाहर देखा है, वो भी शहर से निकलते हुए। समझ गए? समझ गए?
1: ठीक है आहद, हम में से कोई भी नायला के बारे में बात नहीं करेगा। किसी ने भी नायला को नहीं देखा। जाओ बाहर, सुबेदा बच्चों को साथ ले जाओ। आइए चलो बच्चा।
0: बहुत ही डरा धमका कर और दिरहम और दिनार की लालच देकर इन सब की जुबान बंद की है ताकि उनके घर में अमन और अमान रहे। लेकिन तुम इनकी माँ या बहन नहीं हो, इन सब से अलग हो। तुम उसके साथ थी, उसकी हम सफर थी। अगर अमर को पता चल गया तो वो इस घर को बर्बाद कर देगा और तुमको ढूंढ निकालेगा।
1: हिलाल कहाँ है?
0: वो चाहे जिस जहन्नुम में भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो अहम नहीं है। वो मेरे लिए अहम नहीं है।
1: आहद, नाहिला से कहो कि तुमने एक बाप का हक अदा किया है और इब्ने ज़ियाद से उसके लिए बात की और अमीर ने उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं।
0: सब जानती है, मैंने सब कह दिया है। उसके अहम इकदाम को मैं जानता हूँ। तमाम रास्तों को उसने बंद कर दिया है।
2: कौन सा रास्ता? जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसे क्यों अपने सर ले ले? कोई खत नहीं था उसके पास, अगर होता तो मुझे मालूम होता।
0: नायला मुझसे झूठ मत बोलो, अपने बाप से झूठ मत बोलो।
3: बहुत मुबारक हो जनाब औहद, बोला तुम पर के इब्ने ज़ियाद पर और तुम्हारे बाप पर लानत, तीनों पर एक साथ।
0: बहुत मुबारक हो।
4: चौकन्ने रहो, नजरें जमाए रखो।
5: इन सिपाहियों के चले जाने के बाद मैं इनका पीछा करूंगा, वो यही चक्कर काटेंगे। जब उधर आने लगेंगे तो मैं आवाज लगाकर बता दूंगा, उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है।
6: आग बढ़ते ही हम हमला करेंगे। या अली,

0: बानो जान, कोई परेशानी है? बोलिए, फिर कहाँ का इरादा है? आपके वालिद की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है, इतनी रात में कहाँ चली आप?
1: तुम भी इंसान हो, सफर से आई हो, थकी हुई हो, जाओ सो जाओ। हिलाल की फिक्र में दिल में आग लगी हुई है।

0: तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? देखो तुम्हें नींद आ रही है, उठो मेरी जान, जाओ जाकर अंदर सो जाओ।
1: बाबा के इंतजार में है, वो आ जाए तो घर जाएंगे।

0: घर किस लिए जाना है? आज रुक जाओ, कल मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी।
1: अलवान यहाँ नहीं सोता, हमें जाना ही होगा।
0: अलवान, जब से आई हूँ मिले नहीं हो तुम, ना जियारत कबूल कहा, ना गले लगाया, ना बात की।
1: गूंगा हो गया है, कुछ बोलता नहीं। कसम से जब से आप मक्का गई हैं, दादा से नाराज है, उनसे बात नहीं करता है, सबसे खफा रहता है।
2: आतिफ, अलवान,
3: चलो।
0: रुकोगे नहीं?
3: आ जाओ, चलो।
2: अजीब आग है वहां, देखो।

0: सिपाही आ गया, जल्दी करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
1: जनाजा क्या हुआ?
2: चुरा कर ले गए।
1: नालायक!

0: गई थी कि तुम्हारे दिल में कीना व हसद है, जब तक मुझे बर्बाद न कर दो सुकून से नहीं बैठोगी।
1: तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो?
0: पहले ही दिन जब हिलाल का नाम तुम्हारी गंदी जबान पर आया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि तुम उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। अब नौबत आ पहुंची है कि मेरे शौहर की जासूसी करती हो।
1: बाबा को आने दो, तब हम दोनों बात करेंगे।
0: कहां? इतनी जल्दी भी क्या है मेरे बचपन के साथी? तुम्हारा सर फूर दूंगी शमीन, तुम्हारी ऐसी आबरू रेजी करूंगी कि जब तक ये दुनिया बाकी है तुम्हारा नाम बुरे लोगों में लिया जाएगा, समझी तुम?
1: इस शहर में कोई भी तुम्हारे अलावा हिलाल से शादी की आरजू नहीं रखता था जिसके पीछे तुम पागल थी। खराब माल उसके मालिक को ही मुबारक हो। ये क्या कर रहे हो?
0: ध्यान रखना कोई अंदर ना पाए।

0: मैंने बता दिया था कि आप आई हैं। जनाब औहद आने वाले हैं, उन्हें बस थोड़ी देर लगी।
1: पैगंबर ने कहा हमने नहीं सुना। हम सब ने कुरान पढ़ा लेकिन समझा नहीं कि जानो माल और औलाद तीनों अजीज हैं और तीनों इंसान के लिए इम्तिहान का जरिया है। अपने मर्दों पर तवज्जो दो, खास तौर से उम्मे हसन। तुम ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर रईसों के डर की वजह से अपना ईमान और अकीदा छोड़ दे।
2: क्या आपको लगता है कि अरीफों को भी उसमें घसीटा जाएगा?
1: अब तक तो ऐसा ही हुआ है। जब तक हम लोगों के होश संभलते हैं और बेदार होते हैं, या तो हम लोगों को फिक्र और तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है या तलवार और जंग का सामना।
2: आप पर कुर्बान जाऊं, आपके घर में भी मर्द हैं, जानती हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो एक बार सोच लेते हैं करके रहते हैं। क्या आपके हिलाल ने वही किया जो कुछ आपने चाहा?
1: मान लिया कि मैं एक बुरी माँ हूं, लेकिन आप कूफा की औरतें पहले ये साबित कर चुकी हैं अपने शौहरों को अपने बस में कर सकती हैं। क्या कूफे की औरतें नहीं थी जिन्होंने हुकूमत के कारिंदों और शाम के सिपाहियों के डर से मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दिया? तुम सब भूल गई हो, ये कूफे की ही औरतें थी जिन्होंने अपने शौहरों को लिबास से पकड़कर खींचा और एक एक करके उन्हें सिपाहियों के दरमियान से बाहर निकाला, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
3: इब्ने ज़ियाद दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, उसका पेट कभी सीर नहीं होता। वो ऐसा खूंखार है कि कत्ल करने में किसी किस्म का डरो खौफ नहीं।
1: हमारा, तुम्हारा और हमारी औलाद का खून औलादे फातिमा के खून से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर डर कर बैठेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वाज़े है कि ये लोग इमाम को कत्ल करना चाहते हैं।
4: काश के हम लोग खुद तलवार उठाएं और अपने इमाम के लिए रास्ता हमवार करें।
1: तलवार के साथ गैरत हो तो ही काटती है, वरना फिर से दारुल हुकूमत का माजरा होगा और मुस्लिम की तन्हाई। तुम सभी हमारी बहनें हो, आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से गैरत खत्म ना कर दे। अगर करार ये है कि कूफे की गलियां शियों के खून से रंगीन हो और इमाम के हुजूर का सबब बने, तो खुदाया इस घर के अफराद के हिस्से में शहादत लिख दे। खुश आमदीद मेरी बहू। खुश आमदीद। तुम्हारे काफिले के पहुंचने की खबर नहीं मिली। मेरा हिलाल कहाँ है?
5: इब्ने ज़ियाद की कैद में है। उनका कहना है कि तुम्हारे शौहर हुसैन इब्ने अली का खत लेकर गया था, बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले गए उसे।
2: तुम्हें बहुत मुबारक हो सामिया कि तुम्हारे सारे मर्दों का हाथ अली के हाथ में है। अपने बेटे की फिक्र ना करो, ये मिट्टी सर्द है, साल भर भी नहीं गुजरेगा कि सारे गम भुला देगी।
5: हमारी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। हमने क्या गुनाह किया था कि ऐसी शर्त रखकर हमें बर्बाद कर दिया? आपके दिल की आग ठंडी हो गई? अब जब आपके बेटे को

0: कैद कर लिया है तो आपकी जन्नत भी हमवार हो गई।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह।
0: बेयार और मददगार एक दुल्हन अपनों और गैरों की नजरों से बचती हुई मक्का से कूफा तक अकेली आई है और आपने अपनी खुशी के लिए इस घर के आखिरी मर्द को दीन पर फिदा कर दिया।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह।
0: आपके बेटे ने नायला नाम की एक बेबस लड़की को पनाह दी, क्या ये कार्य सवाब नहीं?
1: मेरे बेटे ने आहद की बेटी से शादी करके रहमो मुरव्वत की ऐसी मस्जिद बनाई कि जिसके मिंबर के नीचे हर रात गुनाहे कबीरा करता है। मेरे बेटे ने ऐसी हाँ कही कि जिसमें कोई खैर नहीं थी।
0: आपने सही कहा, खैर उस शर्त में है जो इब्ने ज़ियाद ने आपके बेटे के सामने रखी है।
2: सलाम मुमानी जान, कैसी आप?
0: सलाम मेरी बच्ची।
3: सलाम, ज़ियारत कबूल हो।
0: बासित की मौत का बहुत अफसोस हुआ।

0: तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? मेरी सियाह बख्त बेटी, मेरी बदबख्त बेटी कहती थी कि हिलाल जानता था, हिलाल जानता था, लेकिन उसने नहीं बताया। फिर भी उसने शादी की। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी करके आबाद हो गया।
1: खुदा की रहमत हो इस घर के लोगों पर। तुम जवान हो, ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन सामिया का ज्यादा ख्याल रखना।
0: इंशाल्लाह।
2: सलाला, तुम्हारा भाई झूले में अकेला है, उसे झुलाओ ताकि सो जाए। बदबख्ती इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी किस्मत आहिया की किस्मत की तरह फूटी नहीं है, यानी तुम्हारा बाप तुम्हें मेरी तरह बेवा बनने का मजा चखने नहीं देगा। हिलाल ने सही जगह निशाना लगाया है।
3: कि ना एमए गुफ्तगू ना करूं, इस माजरे की सबसे पहले मुझे शिकायत है। आखिरी वक्त तक तुम्हें किसी पर शक नहीं हुआ कि किसने तुम्हारे शौहर को फंसाया? हिलाल कैद कर दिया गया, तुमने खुद नहीं सोचा क्यों और कैसे हुआ ये सब?
2: तुम्हारी तरह मुझे आलमे गैब की खबर नहीं है, तुम्हें तो हुकूमत के कामों की खबर है। तुम ही बताओ किस तरह और क्यों मेरे शौहर का खून बहाया गया?
3: इतनी मुतमईन हो और शैतान के गुनाहों को भी बईद और नामुमकिन समझती हो कि अपनी आस्तीन में छुपे सांप को नहीं देखा?
0: क्यों ढकी छिपी बातें कर रही हो? कौन सा सांप हमारी आस्तीन में है? पहले इब्ने जियाद का शर और अब जासूसी की बातें? सही बात बताओ तो पता चले माजरा क्या है।
3: जिसने दोनों बार खुद की जासूसी की है वो इस वक्त हमारे घर में है। मैंने उसे घर में बंद कर रखा है। शमीम, शियो की जासूस शमीम है।
4: दरवाजा खोल दो।

0: मेरा कोई खानदान नहीं है। एक बात तो तय है, अगर इब्ने ज़ियाद छोड़ भी देता है तुम नहीं छोड़ोगे।
1: बकवास मत करो, हुसैन मान जाएंगे, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है।
0: किससे डरूं? मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी के इन चंद दिन इसे नाकिस दीन पर बाकी रहूं।
1: यह बात जान लो जवान, कल तक अगर राजी ना हुए तो तुम्हारा सर सामिया की गोद में होगा।
0: मेरी मां को मुबारक हो, खुदा की जहन्नुम तुम्हारी दुनिया से बेहतर है।
1: मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल इस काम के लिए राजी नहीं है, लेकिन नायला के लिए अपने सर को झुका दो, उसकी जान खतरे में है।
0: नायला से ईमान चाहता हूं।
1: इब्ने ज़ियाद जंग का इरादा नहीं रखता, सिर्फ हुसैन को डराना चाहता है। अगर जंग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें मुश्किल क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम लश्कर के साथ रहे, बस उसके माल के साथ रहो।
0: आज कोई शख्स और कोई भी चीज दुनिया में हिलाल के लिए अहमियत नहीं रखती। अपने अमीर इब्ने ज़ियाद से कह दो कि मेरा दामाद पागल हो गया है और हुक्म की मुखालफत कर रहा है।

0: मैंने सुना है कि वो सात लोग थे।
1: उनकी आकिबत बखैर हो, कूफे के मर्दों की बेरहमती उसका सबब।
2: मैंने सुना है सात आदमियों को पकड़ा है, एक एक करके सर कलम करेंगे ताकि लोगों के दरमियान दहशत पैदा कर सके।
3: इब्ने ज़ियाद के हुक्म से उस खताकार हमीद बिन अरफा कि जिसका लकब अबू साले है और उसका जुर्म मीसम तम्मार को फांसी से नीचे उतारना है, सब कान खोल के सुन लो, इसका सर कलम किया जाएगा ताकि उसके दोस्त और करीबी लोग अपना अंजाम भी अपनी आंखों से देख सकें। कूफे के कबीलों के सरदार कान खोल के सुन लें, खताकार कबीले के सरदार का सर काट दिया जाएगा ताकि तुम लोग जान लो कि जो लोग रात में इनके जिस्मों को अगर हाथ भी लगाया।
4: साले, दिल मजबूत रखो। लिबास अज़ाउन कुदरत और हुकूमत के लालची लोगों की किस्मत में है कि जिन्होंने सबका जीना हराम किया। यकीन रखो कि तुम्हारे वालिद अली इब्ने अबी तालिब के मेहमान हैं। शक न करना।
5: पाक दूध और हलाल गिजा जो अपने बेटे को खिलाया है उसने अपना काम कर दिखाया, उसकी खबर सुनी मैंने।
3: शुरू करो।
6: देख रहे हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ना कि हुकूमत का। हुकूम के कानून के मुखालिफत और अमीर पर एतिमाद ना करने का नतीजा यही है। बेचारे अरीफ ने क्या किया है कि वो सजा भुगते। जब तक ये दुनिया बाकी है, इन बच्चों और औरतों की आहें इन खताकारों का पीछा करती रहेगी। एक आदमी गलती करता है और सजा सबको मिलती है। शाबाशी हो हम पर तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है?
3: तुम बेकार में चिल्ला रहे हो। चंद दिनों के बाद तमाम जंगजू मर्द और गैर जंगजू, बूढ़े और जवान, बालिग और नाबालिग, सबको उमर बिन साद के लश्कर में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा ताकि उनकी तादाद से दुश्मन की आंखें अंधी हो जाएं। सब जान लो कि किसी को भी सर उठाने की मोहलत नहीं दी जाएगी। इनके हाथ खोल दो।

0: तुम सिया बिल्ली की तरह हो, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी खातिर मैंने हिलाल को छोड़ा जबकि उससे मोहब्बत थी? क्या तुम भूल गई कि मैंने हिलाल के हाथ पैर जोड़े कि वो औहद की बदबख्त बेटी की पनाहगाह बन जाए? भूल गई सब? मेरे साथ ऐसा सलूक करती हो जिसने हमेशा खुद से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा? भूल गई?
1: तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया, बिला वजह मुझ पर एहसान न जताओ। तुम अच्छी तरह जानती हो अगर हिलाल से शादी की ख्वाहिश का इजहार करोगी तो मैं सबको बताऊंगी कि किस तरह मरियम मुकद्दस दर हकीकत यहूदा लानत की तरह है।
0: मुझे मालूम नहीं था, खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि हिलाल मक्का खत लेकर जाएगा। मैं क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए?
1: फिर बासित के खत का क्या? उससे भी बेखबर थी? नहीं ना, तुम्हारी जुबान ने उसका खून बहाया है, जानती हो?
0: मैंने जो भी किया अच्छा किया। तुम्हारा दिल उस आदमी के लिए परेशान है? अगर कराबतदारी और रिश्तेदारी की बात है तो तुम मुझसे ज्यादा करीब हो सामिया की कौमों कबीले के।
1: तुमने मेरे और हिलाल के दरमियान भी जुदाई डाली, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। जाओ जाओ, अब आजाद हो तुम।
2: इतनी दुश्मनी और जहर कैसे छुपा रखा था तुमने?

0: 走，哎呀，哎呀，听走，
1: 你个屌，
0: 听走，哎呀，哎呀，
1: 哪方法你个屌，哎，
2: 如果，
0: 那马路。
1: अगर बात नहीं मानी ना तो मैं तेरी हाल उधर कर दूंगा सर में से समझ खाना होगा समझ में आया तुझे
2: बस करो
3: हाँ हाँ रो
1: ताकि हमेशा याद रखो
0: आहिया आहिया रुक जाओ आया खुदा के वास्ते रुक जाओ आया आया मेरी बात तो सुनो आया आया तुम्हारी कनीस बन के रहूंगी आया आया मुझे माफ कर दो आया मेरी बात सुनो आया तुम्हें खुदा की कसम तुम उनसे कुछ मत कहना
4: कान खोल कर सुनो आज के बाद अपनी नजिस जुबान पर मेरे शहीद शौहर का नाम न लेना समझ गई
5: क्या हुआ मेरी बेटी आया क्या हुआ इसे
2: हा? मुझे कुछ मालूम नहीं
5: कुछ भी नहीं
2: खुदा मुझे मौत दे
0: खुदा ना करे बानो ऐसा हो
2: मुझे कुछ नहीं हुआ है बानो बस एक दो दिन में ये जख्म हवा लगती रहेगी तो ठीक हो जाएगा
0: बानो माफ कर दो मुझे

0: दरवाजा खोलो।
1: इनास, नायला, आ जाओ के वक्ते रुखसत आ गया।
2: हिलाल, हिलाल, हिलाल। कुर्बान जाओ। बाबा इसे खोल दे, इसे खोल दे।
3: मैंने इसके लिए बहुत इल्तिजा की कि तुम्हारे हाथ खोल दे, लेकिन कबूल नहीं किया। मुझे भूल गए हो, जो देखते भी नहीं। अपने दर्द मुझे दे दो। इतना ज्यादा मुझसे बेजार हो?
4: मैंने तुम्हारे और मां के अलावा किसी को खत की इत्तला तक नहीं दी।
3: तो
4: उस दिन जब तुम मुसाफिर खाने में मां को खत लिख रही थी, सफर की सख्तियों के अलावा भी कुछ लिखा था?
3: मुझ पर शक कर रहे हो? जिसे खुद शिकायत है उसी से गिला कर रहे हो? तुम समझते हो मैंने तुम्हें फंसाया है? इश्क का आगाज मेरे दिल से हुआ था। मैंने पनाह मांगी थी, ना कि तुमने मुझसे।
4: सोचा शायद सफर में तुम्हें मेरी बेहतर शनाख्त हुई और परेशान हो गई।
3: हाया करो, मैं यानी अली के दुश्मन की बेटी तुम्हारा खत जान पर खेलकर मदीना तक ले गई और उसके बाद उस खत को सही जगह तक पहुंचाया। मैंने तुम्हारी बात की लाज रखी और उसका सिला मुझे ये मिला।
4: उम्मे सलमा के हवाले किया?
3: मैं ना हुसैन की तरफदार हूं ना यजीद की। मैं दुनिया में बस ऐसा घर चाहती हूं जहां तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकूं।
4: मुझे माफ करना। मैं ही शायद समझ नहीं पाया।
3: सिर्फ हमारी बात होती तो समझ लेती कि हमारे किस्मत में यही लिखा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस दफा मामला मुख्तलिफ है। तुम्हें इब्ने ज़ियाद की शर्तों को कबूल करना होगा।
4: क्या कह रही हो नायला? तुम तो जानती हो कि मैं जबरदस्ती किसी के सामने सर नहीं झुकाता।
3: इस दफा मामला अलग है।
4: कैसे अलग है?
3: तुम्हारी गर्दन पर इस बच्चे का भी हक है। तुम इसके बाप हो। मान गया है,
1: माफी चाहता हूं, लेकिन खुदा की कसम आज रात जब तक सारी हकीकत ना जान लूं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। जमीन तो गूंगी हो गई है और उसका पूरा वजूद कांप रहा है, और आपका बर्ताव ऐसा है कि अगर आपका मेहमान ना होता तो शायद अब तक 100 बार मुझे घर से निकाल चुकी होती। गुरूब से कबल जब मैं पहुंचा तो देखा सामान बांध कर फरार होना चाहती है। कमरे में बंद कर दिया ताकि बात करे, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। आपको मोहम्मद के खुदा का वास्ता, बताइए क्या हुआ है? शमीम ने क्या किया है कि बाजार में खड़े होकर तुम्हारी बेटी के सामने इल्तिजा कर रही थी?
5: बता दीजिए ताकि इन्हें सुकून मिल जाए। बताइए कि इनकी बेटी ने घर वालों के लिए कैसे मुसीबत खड़ी की है।
3: थोड़ा हौसला रखो।
1: आप ही बताइए उस बदबख्त ने आखिर किया क्या है?
5: अपनी माँ की एहतराम में मैं बुरा गुमान नहीं कर सकती कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों तवील मुद्दत तक हम निवाला व हम प्याला थे। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जासूस घर में मौजूद हो और आपको खबर ना हो? अबू शमीन,
1: जासूस? क्या कह रहे हैं ये?
5: मेरी तरफ देखिए, अगर इसका जवाब चाहते हो तो देखिए कि शमीन के अमाल का नतीजा मैं भोगत रही हूँ। बासित के खत की खबर जिसने दी है वो आपकी बेटी है जनाबे फाजल।
6: मैं
0: तुमसे इल्तिजा करता हूं कि बददुआ ना करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कि मुझे माफ कर दो।
5: अगर मेरे कानों ने गलत सुना भी होगा तो आपकी बेटी ने खुद गुनाह का एतराफ किया है। क्या आप अंधे और बहरे हो गए थे जो उसकी चीख और पुकार को बाजार में नहीं सुन पाए? अगर वो बेगुनाह होती तो इस तरह इल्तिजा ना करती। क्या आप अंधे और बहरे हो गए थे जो उसकी चीख और पुकार को बाजार में नहीं सुन पाए? अगर वो बेगुनाह होती तो इस तरह इल्तिजा ना करती। बिलाल के लिए मोहब्बत कम कर दी आप और आपकी बेटी ने। मेरे शोहर को मुझसे छीन लिया और मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। खुदा तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद करे।
1: मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ये बददुआ ना करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, कि मुझे माफ कर दो ताकि तुम्हारी ये आह आसमान तक ना पहुँचे।
6: मैं क्या करूँ मुझे बताओ।
5: तुम्हारी बेटी ने खून बहाया है, वही करो जो हर कातिल के साथ किया जाता है।
6: उसको कत्ल कर दूं मैं? सामिया, इल्तिजा करता हूं, मेरी मदद करो, कुछ कहो, मुझे निजात दिलाओ। तुम खुद देखो ये क्या कह रही है।
3: मैं क्या कर सकती हूँ फाजिल, जब साहबाजा खुद घर में है तो मैं क्या कर सकती हूँ।
6: हाय अफसोस, हाय अफसोस। तुम खुद साहिबे औलाद हो, दिल में औलाद की मोहब्बत रखती हो मोमिना। मैं किस तरह अपनी बेटी को कत्ल करूं? मुझसे उसके अलावा कुछ और तलब करो। मेरी इल्तिजा है कि कुछ और तलब करो मुझसे।
5: आपको याद है इसी कोने में बैठे हुए थे जब हिलाल के मरने की खबर आई तो आपने खुदा का शुक्र अदा किया। तो लानत हो उस ईमान पर जो आप रखते हो, जिस तरह मेरे हिलाल की नाहक आबरू रेजी की है उसी तरह मैं भी गली कूचों में जाकर बरहक तुम्हारी बेटी की आबरू रेजी करूंगी।
6: नहीं नहीं, आबरू रेजी के जरिए मेरा इम्तिहान ना लो, मुझ में उसकी ताकत नहीं है। कोई दूसरी चीज मांगो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इल्तिजा करता हूँ।
5: बाजार यहाँ से 2 कदम के फासले पर है, या आबरू रेजी बर्दाश्त करो या कत्ल कर दो।

0: फिक्र ना करो, सामान करबला ले जाओगे और लौटाओगे।
1: इमाम के दुश्मन की मदद करना भी इमाम के मुकाबले जंग करने के बराबर है।
0: जानती हूँ।
1: खुदा की कसम, अगर बच्चे का मामला ना हो तो हरगिज़ इस ज़िल्लत को कबूल न करता। नायला, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए।
0: तुम फिक्र ना करो।
1: ये क्या है?
0: डरो नहीं, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। लौटने के बाद हम तीनों सबसे दूर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे।

0: ध्यान से, खुदा की अमान में रहो।
1: नायला, इसने कोई शर्त नहीं रखी?
2: नहीं, इतना मुतमईन होकर गया है कि मुझे नहीं मालूम जब लौटेगा तो जो झूठ मैंने बोला है मैं क्या बोलूंगी।
1: झूठ नहीं बोला है, तुमने सही काम किया है। वो तो बस जिद पर अड़ा हुआ था, तुमने उसकी जान बचाई है।
0: चलें,
1: आओ चलते हैं बेटा, तुम फिक्र मत करो।
3: इस रीश सफेद को असलहा दो, वो जंगजू है। इस जवान को भी असलहा दो। अस्सलामु अलैकुम जनाबे अहद।
0: वालेकुम सलाम जनाब हरीस।
3: वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा शौहर मर्द जंगजू होगा। बिनते अहद, शाबाश। अगरचे इसका जाना भी काफी मजाक वाली बात है, लेकिन फिर भी घर में छुपे रहने से बेहतर है ना?
0: इब्ने ज़ियाद का सर सलामत रहे। हर शख्स अपनी तवानाई के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है?
3: जी।
0: बेहतर है कि अपना अपना काम करें। इतने ना तजुर्बाकार लोगों को जंगी लिबास पहनाना बहुत सख्त है।
3: बिल्कुल,
0: चलते हैं। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज।
4: मेरा बेटा बस थोड़ा सा रह गया है। मेरे बच्चे, आज तो तुम्हारी बारी है। चार दिन सलाला आई थी और आज अली। मेरी जान, जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बाप के लिए तड़प रहा है। ये भी जानती हूँ कि इसका दिल भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है। हाय, अफसोस इसे तुम्हें एक बार गोद में लेने की फुर्सत ना मिली। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हर रोज इसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये महसूस करेगा कि जैसे कि तुम अभी हो। मेरी जान पहुंच गए।
5: सलाम ए खाक में सोने वाले हैं।

मैंने उसे सोते हुए कत्ल कर दिया, बदला ले लिया उससे, शायद इससे तुम्हारे टूटे दिल को सुकून मिल जाए। मैंने खुद से अहद किया कि इसके गम में सियाह लिबास भी नहीं पहनूंगा।

ठीक नहीं, या मेरे बच्चे को कोई परेशानी है, ये माएं हैं, ये माएं होती हैं। मां कब्र के अंदर भी अपनी औलाद को दुआ देती है। मां जब इस दुनिया से उठ जाती है, उसका बदन जब कब्र के अंदर चला जाता है, तो कब्र के अंदर से भी अपनी औलाद को दुआ देती है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो आपको याद दिलाऊं, मदीना मुनव्वरा है, 28 रजब सन 60 हिजरी है, हुसैन इब्ने अली नाना के रोजे को छोड़ते हैं, माँ की कब्र पे आते हैं। अम्मा, हुसैन मदीना छोड़ना नहीं चाहता, अम्मा हुसैन आपके पास रहना चाहता है, अम्मा हुसैन आपकी कब्र के पास रहना चाहता है, मगर अम्मा हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। जाकिरीन यहां पे एक जुमला पढ़ते हैं कि अजब नहीं कि कब्र से जवाब आया हो, बेटा हुसैन तुम जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ रहेगी। मगर एक अजीब और गरीब रिवायत है, आशूर का दिन, मुहर्रम की दूसरी मुहर्रम सन 61 हिजरी है, हुसैन इब्ने अली काफिले के साथ करबला पहुंच गए। हुसैन ने जमीन करबला को खरीद लिया, बनू असद को बुलाया, बनू असद के साथ हुसैन ने वसीयतें कर ली। अचानक फिजा हुसैन के पास आई और जनाब इमाम हुसैन से कहने लगी, मेरे सैयद आका, आपको आपकी बहन जैनब ने याद किया है। हुसैन उस वक्त दूसरी मुहर्रम को, हुसैन उस वक्त अपने मकाम को छोड़कर अपनी बहन जनाब जैनब के खेमे में आए, और जनाब जैनब से हुसैन एक मरतबा हुसैन दाखिल हुए और अपनी बहन से कहा, बहन जैनब क्या बात है, तुमने किस लिए बुलाया है, मैं वसीयतें कर रहा हूं, बनू असद को वसीयतें दे रहा हूं, किस लिए बुलाया है। आप जानते हैं जैनब ने क्या कहा, भैया लकद अदखलनी हौलन अज़ीमा, भैया मेरे दिल में एक अजीब बेकरारी है। फरमाया, बहन क्या बेकरारी है, तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है। फरमाया, भैया न जाने क्यों जब से हम इस जमीन पर आए हैं, मुझे किसी मां के रोने की आवाज आ रही, मुझे किसी मां के रोने की आवाज आ रही है। हुसैन ने अजब नहीं जैनब से कहा हो, जैनब ये हमारी मां फातिमा जहरा है, आशूर का दिन है, आशूर की शब है। हुसैन एक मरतबा अपने खेमे को छोड़ के और चार निकल के खेमे को छोड़ के मक्तल की तरफ जा रहे हैं। हुसैन के पीछे एक सहाबी हुसैन के साथ साथ चल के आ रहे हैं। एक मरतबा हुसैन ने पूछा कि तुम क्यों आ रहे हो, सहाबी ने कहा, मौला आपकी हिफाजत के लिए आ रहा हूं। हुसैन ने हाथ लिया सहाबी का, एक मरतबा आगे बढ़े, एक सरजमीन पे, एक जगह जमीन पे हुसैन बैठ गए और गिरिया करना शुरू किया। फरमाया, मौला आपने क्यों गिरिया किया। फरमाया, यहां मेरा अली अकबर शहीद होगा। फिर खड़े हुए, फिर दूसरे मकाम पे गए, फिर बैठ गए, कहा क्यों बैठ गए मौला, क्यों गिरिया किया। फरमाया, यहां मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे। फिर एक जगह खड़े हुए, एक जगह पे गए, कहा यहां मेरे अली असगर के लिए मैं हुसैन पानी मांगता रहूंगा। ये कहते कहते एक मर्तबा हुसैन नशेब के पास आए। जब नशेब के पास आए, हुसैन कहना चाह रहे हैं, ये वो जगह है जहां जुलजनाह से मैं जमीन पे आऊंगा। मगर हुसैन ने देखा कि सहाबी तवज्जो नहीं कर रहा है। एक मर्तबा हुसैन ने दोबारा कहा, सहाबी तवज्जो नहीं कर रहा था। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ऐ सहाबी क्या बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नशेब है, तुम तवज्जो नहीं दे रहे हो। फरमाया, मौला में तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि मेरे कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही। सयालमु लजीन ज़लमु अय्यमन क़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा وسر المستودع فيها اللهم ادخل على اهل